FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

एक बार मेरे पास एक प्यारा सा बुलबुल का बच्चा था जो खिचड़ी खाता था और रोज सुबह मुझको अच्छे अच्छे गाने सुनाता था। मगर एक दिन वो बुलबुल का बच्चा मुझसे रूठ कर चला गया और अभी तक वापस नहीं आया।

दोस्तों, आपने चांद को आसमान पर चमकते तो देखा है, लेकिन कभी चांद को नदी में नहाते देखा है? आए देखते हैं।

बहुत ही शरारती चूजे थे। एक दिन दोनों घर से निकलकर एक बाग में गए और वहाँ बेचारे एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। और पता है फिर क्या

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हर काम शुरू करने से पहले हमें अल्लाह का नाम लेना

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: सच बोलने वाला बहुत बहादुर होता है, बिल्कुल शेर की तरह, और झूठ बोलने वाला बहुत बुजदिल होता है, चूहे की तरह। इसलिए

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: मेरे पास एक मुर्गी है जिसने अपने चूजों के साथ फौज बनाई हुई है। वो हमेशा घर से कुटकुट करती हुई निकलती है और अपनी फौज को साथ लेकर चलती है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें अपने वतन के लिए बहुत मेहनत से काम करना चाहिए। आए सब मिलकर अपने वतन के लिए

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: 7825, code 6, 105 North Avenue.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

सवाल गम है, जवाब गम है। हजार सालों में जो मुकम्मल हुई मोहब्बत की खून रंगी किताब गम है। तुम्हारे लब पे जो मुस्कुराहट है, मेरे लब पे जो आशनाई की मंजिलों का सफर लिखा है, ये सारा गम है। किसी के तन की सुंदरता गम है,

मर्द गम ही गम हैं, जो मेरी नज़मों के जंगलों के विषमत रस्तों पे खो गए। वो साल खुर्दा हसीन औरत भी गम का चेहरा बनी हुई है, जिसे मोहब्बत ने रोशनी की नवीद दी थी, वो जिसने वादों से अपनी मंजिल कशीद की थी। वो गांव की कच्ची पक्की राहें, मेरी माँ की नहीं बाहें भी गम ही गम थी, कि मेरा बचपन तो गम के लंबे सफर की गमगीन इब्तदा थी।

0: रहा हूं
1: ताकि उनको उनके आमाल दिखा दिए जाएं, तो जिसने जरा बर नेकी की होगी वो उसको देख लेगा और जिसने जरा बर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा।
2: आइए सामईन सुनते हैं नाते रसूल मकबूल।

0: बनी हुई है डेनमार्क के अंदर, इस टाइम कोपेनहेगन के अंदर, वो रोड वर्क की वजह से बनी हुई है। और इस बार पता नहीं गवर्नमेंट ने कौन से पॉलिसी साजों के साथ बैठकर ये बात की है कि सारे रोड को ना एक एक वक्त पे ही बनाना है, 1-2 महीने के अंदर खत्म करने हैं। जिस तरफ जाएं आप कस्टमर बैठा लें, आप हो सकता है 120 करोड़ का टूर हो तो आप जाएं आगे रोड बांधे। कोई कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि हर किस्म के, मैं समझता हूँ कि कोपेनहेगन सेंट्रम वेस्ट्रोब्रो ओस्ट्रोब्रो, आप खुद सेंट्रम के अंदर रहते हैं राय साहब, आपको पता है तकरीबन हर रोड ही जो है ना वो काम पे लगा हुआ है। जहां रोड नहीं है वहां स्टीलेस वाले आ जाते हैं, बिल्डिंग का काम शुरू हो जाता है, तो इस वजह से जो काफी ज्यादा मसले बने हुए हैं। सिर्फ ट्रैफिक इस वजह से बहुत ज्यादा जाम है।
1: लेकिन ये जो साइकिलों का बड़ा रिवाज है, बड़ी साइकिलें हैं, बड़े साइकिलों के नाम से डेनमार्क बड़ा पॉपुलर है, तो साइकिलों को प्रायोरिटी दी जाती है और ट्रैफिक का निज़ाम, खासकर आप तो हर वक्त गाड़ी चलाते हैं, तो साइकिलों की वजह से आपको डिस्टर्ब तो नहीं होते?
0: ये साइकिलों की वजह से, साइकिलें तो अभी समर में, विंटर में तो फिर भी राय साहब गुजारा हो जाता है, समर में तो अभी साइकिलों की तादाद बहुत सख्त हुई हुई है और आगे बहुत ज्यादा तेज हुई हुई है। और अभी आपको पता है पेट्रोल की प्राइसें हाई होने की वजह से, फिर कुछ शहर के अंदर पार्किंग की प्राइसें ज्यादा करने की वजह से और पार्किंग की जगह कम होने की वजह से बहुत ज्यादा मसले हैं। लोग शहर के अंदर जो है वो तकरीबन सिटी के अंदर जो है वो साइकिलों को इस्तेमाल जो है ना वो ज्यादा कर रहे हैं।
1: फैसल, जब आप
0: आपको
1: गाड़ी चार्ज
0: रेंट पे
1: करते हैं
0: मिल
1: तो
0: जाती है
1: गाड़ी का
0: साइकिलें।
1: टाइम होता है 3 घंटे या 3.5 घंटे चार्जिंग के लिए, उसके बाद अगर वहाँ गाड़ी आप खड़ी करते हैं तो वो फिर आपको जुर्माना हो जाता है, ये भी एक सज़ा नहीं है गाड़ी वाले के लिए?
0: वो सजा तो सजा है, बहुत सारी सजाएं हैं। आप जारी बात है, जब उन्होंने बिजली वाली गाड़ियां एलपीने शुरू करनी थी इधर, उस वक्त तो बड़ी सहूलतें दी हैं, तो लेकिन अब आस्ता आस्ता उनके लिए भी मुश्किलें बन रही हैं। और अब तो हर जगह पे वो इसी तरह है, अब बहुत से जो बिजी चार्जर हैं उसके ऊपर, अगर फास्ट चार्जर है उसके ऊपर भी आपकी गाड़ी की 80% हो जाती है चार्जिंग, तो आपने गाड़ी उधर से हटानी है। अगर 80 से ज्यादा होगी तो ज्यादा, तो वो भी जुर्माने वाले आके आपको गुस्सा करेगा, या दूसरा जो लाइन में लगेगा वो भी गुस्सा करेगा कि 80% होगी या निकलो सारे कि अगली की बारी आए।
1: मेरा सवाल आप नहीं समझे, अगर आप गाड़ी चार्जिंग के लिए लगा जाते हैं नॉर्मल चार्जिंग की, तो उसका 3 घंटे टाइम है, 3 घंटे अगर आप गाड़ी हटाते नहीं है तो आपको जुर्माना हो जाता है, इसका मतलब वो
0: जी
1: टाइम
0: जी
1: आप किस तरह गुजारते हैं?
0: 3 घंटे वाले ज्यादातर जो है स्लो चार्जर जो है वो तो क्या कहते हैं वो इसी तरह ही वही इस्तेमाल करते हैं जो प्राइवेट गाड़ियां, जिनके अगर किसी जगह पे जाना है तो 2-3 घंटे का काम है तो वो इस तरह ही वो लगाते हैं ना। तो ज्यादा लोग जो टैक्सी ब्रांच जो है वो ज्यादा फास्ट चार्जर यूज करती है, किसी के घर के बाहर है तो वो रात वाला लगा जाते हैं। ये ज्यादा शहर के अंदर है कि 3 घंटे या 4 घंटे की पार्किंग है, वो फिर उनको वो उसका ख्याल रखना पड़ता है।
1: तो आपके ख्याल में
0: तो फिर
1: फास्ट चार्जिंग में और स्लो चार्जिंग में कोई फर्क पड़ता है, या कि स्लो चार्जिंग जो है उससे कोई मतलब गाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फास्ट करें या स्लो करें?
0: नहीं, गाड़ी स्लो चार्जर को जो है वो इतना फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन स्लो चार्जर डेफिनेटली जो है सब वो टाइम लेता है, तो उसके 3 घंटे के अंदर तो इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि 11 किलोवाट का चार्जर होता है तो वो काफी टाइम लेता है।
1: मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ कि फास्ट चार्जर से गाड़ी को तो कोई नहीं फर्क पड़ता।
0: नहीं, गाड़ी के इतना फर्क नहीं पड़ता फास्ट चार्जर से, क्योंकि दो डिफरेंट किस्म की बैटरियां आ रही हैं। कुछ जो चाइनीज गाड़ियां हैं वो अब 100% पे आप ले के जा सकते हैं, जो मर्सिडीज हैं, फल्के वोन है, या ऑडी की गाड़ियां हैं जो जर्मन या यूरोपियन की बनी हुई है, वो उनकी जो बैटरी है वो 80% तक आपने चार्ज करनी होती है। जो इधर आप चाइनीज गाड़ियां हैं ये तो वो कहते हैं कि आप इसको बैटरी को आप कम से कम हफ्ते में 1-2 बार 100 के ऊपर लेके जाएं ना, तो वो करते हैं। मेरी अपनी गाड़ी के साथ थे, किया थी जिसके साथ प्रॉब्लम हुई है, तो वो
1: चलिए
0: इस
1: फैसल, आते हैं ये तो
0: वजह से
1: सारी बातें साथ साथ चलती रहेंगी। फैसल, आप नौजवान हैं
0: 2.8।
1: और आप एक पाकिस्तानी सियासी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि आप यहाँ डेनमार्क में रहते हैं, तो क्या पाकिस्तान की सियासत करनी चाहिए या डेनमार्क की सियासी पार्टियों की करनी चाहिए, आप क्या कहेंगे?
0: ऐसा मैं तो आपको जो सही बात है ना वो मैं ये कहता हूँ कि हमें डेनमार्क की सियासत करनी चाहिए। डेनमार्क की सियासत में बहुत ही अहम किरदार है, کہ پاکستان کی سیاست میں سمجھتا ہوں آپ میں آپ ادھر لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی آپ نے لکھا ہوا تھا جب آپ نے اپنا مونو چلایا کہ نوجوان سیاست دان میں سمجھ

0: मैं सियासतदान नहीं हूँ। मैं अगर मैं डेनमार्क के अंदर सियासत करता ना, इधर सियासतदान है हमारे भाई है स्कंदर, स्कंदर भाई है वो सियासतदान है, अपने क्या कहते हैं जोहेर है उसने इलेक्शन, जो इलेक्शन लड़ते हैं वो है कासम भाई है, राशिद भाई है, ये सियासतदान है इधर। ये हम लोग बस ये है कि अपनी अपनी एक संजीदा पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपना एक होल्ड जो है या अपना एक ग्रुप अपनी
1: मतलब
0: पार्टी
1: आप
0: का
1: इसको एक
0: वो यूरोप
1: शुगल
0: के
1: कह
0: अंदर
1: सकते हैं।
0: जितना, ये शुगल मेला है, शुगल मेला है, खाना पीना है, मिल बैठने का एक बहाना है, अगर कोई मसाइल हो जाए तो आप अपनी पार्टी, अगर जिसकी हुकूमत में हो तो कोई मसलन PIA का मसला है, कोई ID कार्ड का मसला है बनाने का, या कोई पासपोर्ट है तो आप अपनी पार्टी को भी कह सकते हैं, एम्बेसी को भी साथ मिला के, तो एम्बेसी के साथ आप बात कर सकते हैं, तो वो जाके तो इस तरह के, लेकिन शुगल मेला है आपको भी पता है
1: लेकिन फैसल
0: ये।
1: आप जिसको शुगल मेला कह रहे हैं इसमें तो आप लोग सब फिर डिवाइड हो जाते हैं, रंजिशें पैदा हो जाती हैं, इसको हल कैसे किया जाए?
0: राय साहब ये तो क्या कहते हैं, क्या है, बहुत बड़ा अलमिया है, ये पाकिस्तान की सियासत का है, पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर ये मसला है कि हम लोग मिलके एक जगह पर बैठ नहीं सकते उस तरह के, अगर बैठते हैं तो उस पे भी डिवाइड हो जाते हैं, तो अगर किसी भी इश्यू पे हमारा कोई इख्तलाफ होता है तो हम उसको जाती इख्तलाफ बना लेते हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, कोशिश तो बहुत करते हैं कि ना हो। आपको पता है इधर भी हमारी जो वो भी भाई हैं हमारे पाकिस्तानी पीपल पार्टी वाले हैं, वो PTI वाले हैं, काफ लीग वाले हैं, हमारा तो यही होता है कि वो हमारे भाई हैं, हम पहले हैं, हम एक प्लेट में हमने खाने खाए हुए हैं, गठे बैठते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ ही रहें, किसी किस्म का कोई इख्तलाफ ना पैदा हो, तो इसी वजह से हम भी मुस्लिम लीग जब से हमारा ये नोटिफिकेशन हुआ है हम इसी चीज पे है कि कम्युनिटी को साथ लेकर चलें कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान की तरफ से एक आवाज बने, तो कम्युनिटी को इसलिए हम साथ लेके चलते हैं। सिर्फ हमने जितने भी प्रोग्राम अभी सदर साहब की क्यादत में किए हैं, जब से मैं रफ्ताब भूमि साहब सदर बने हैं, हमने कम्युनिटी की सतह के प्रोग्राम किए हैं, किसी जगह पे हाँ अपनी जो महाना मीटिंग है वो हमने मुस्लिम लीग नून की है, लेकिन अगर जब हमने कोई भी प्रोग्राम किया है 14 अगस्त का, 28 मई का, 25 दिसंबर का, जो भी किसी किस्म का भी प्रोग्राम है, 23 मार्च का, तो हमने कोशिश की है, हमने एम्बेसडर साहब को भी दावत दी है, एम्बेसी को भी दावत दी है, कम्युनिटी के हर फोरम को हमने ना दावत दी है, तो
1: अपना आप
0: यही
1: बात
0: है।
1: ठीक कह रहे हैं फैसल, लेकिन देखा है कि सियासी जमातों की वजह से कम्युनिटी डिवाइड हो जाती है।
0: सब मैं तो इस तरह नहीं समझता कि कम्युनिटी डिवाइड होती है, वो चंद सियासतदान या मीडिया की नजर से अगर कोई देखा जाए तो वो इख्तलाफ को वो इस तरह देखा जाता है, अभी भी आप अगर देखा जाए तो कम्युनिटी को डिवाइड का ये है कि हम किसी की खुशी गमी में ना जाएं, हम कुछ ऐसे मसाइल हो जाएं, किसी को मदद की जरूरत है हमारे PTI वाले भाई को या हमारे पीपल पार्टी वाले भाई या काफ लीग वाले को, तो हम उस जगह पे उसकी खुशी गमी पे हाजिर ना हो, तो ये डिवाइड है। हाँ नजरिए का इख्तलाफ है, उनका अपना लीडर है, उसका अपना नजरिया है, हमारा अपना लीडर है, हमारा अपना नजरिया है, तो ये इसमें इतनी कोई बात नहीं है, हम तो कोशिश करते हैं कि मिलके
1: सर
0: बैठें,
1: इसका मतलब अपना अपना पीर आप रखते हैं।
0: वो तो फिर मजबूरी है, पीर भी आ रहे कि किसी का अपना अपना है उसके, आपको पता है कि, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि इख्तलाफ को जो है वो सियासी इख्तलाफ को सियासी इख्तलाफ की तरह ही देखा जाए, कोई जाति या कोई इस तरह का ना बने, तो बाकी लीडरदारी बात हर किसी का अपना होता है, हर किसी का अपना नजरिया होता है, हर किसी का अपना तरीकाकार होता है, सम टाइम एक ही तरीके काम होता है लेकिन उसके करने के तरीके जो है डिफरेंट होते हैं, उस पे भी सम टाइम वो एक पार्टी के अंदर भी इख्तलाफ आ जाता है।
1: फैसल इख्तलाफात आ जाते हैं तो इख्तलाफात पार्टियां खुद हल करती हैं ना, ये जाए के दूसरों की तरफ चले पड़ते हैं कि हमारे इख्तलाफात दूसरे ठीक नहीं करने देते।
0: नहीं मैं इस कोई राय साहब को इतनी आपकी इस बात को समझा नहीं हो कि कौन पे किस तरफ चला के दूसरों की तरफ, तो कोई भी इस तरह जो दूसरों की तरफ जाते हैं वो फिर जारी बात है वो डिवाइड होते हैं, वो ये तो नहीं है कि आप कहें कि वो दूसरा तो आगे और ही काम खराब करेगा,
1: और ही काम खराब
0: तो
1: करता है। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपने मंशा ने ज्वाइन कर लिया, ये भी नौजवान है। मंशा आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी बहुत शुक्रिया राय साहब आपको और हाजी फैसल अयूब साहब आपके मेहमान हैं इनको और आपके तमाम।
1: आपने फोन किया चूंकि आज तो हमारे हाजी फैसल मेहमान थे, आपने फोन किया तो हमने उठा लिया, फिर क्योंकि आपकी तरफ से सबकी तरफ से शुरू हो जाता है, हमें बात करने का मौका नहीं मिलता।
2: नहीं जी आपने खुद ही बोला हुआ जी, जिसको भी दिल करता है कॉल करें और मैंने कॉल की आपने उठा लिया, आपका बहुत शुक्रिया जी। गिला तो हमें कभी भी नहीं करते जी, हमने कभी नहीं गिला किया, तो ये कि आपकी मोहब्बत है जी, आपने हमारा फोन उठा लिया। आज हमारे माशाल्लाह यंग और क्या कहते हैं जी जवान और माशाल्लाह हाजी अभी अभी हाज करके आए, अल्लाह पाक इनका हाज कबूल करेगा, हमारी तरफ से आपकी तरफ से और सबकी तरफ से मुबारकबाद भी देते हैं। तो गुफ्तगू सुन रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था, मैंने कहा चलो मैं भी इसमें थोड़ा सा शामिल होता हूँ, इसलिए मैंने कॉल कर लिया। मेहरबानी आपकी, आपने फोन उठाया।
1: मंशा आपकी तरह हाजी फैसल ने भी कहा है कि सियासत हमें जो है यहाँ डेनमार्क की करनी चाहिए।
2: इसमें तो कोई राय साहब, ये तो एक कॉमन जो कहते हैं जी, एक कॉमन मकूला है, कॉमन एक कॉल है कि हम ये सब बातें तो यही कहते हैं, आप भी कहेंगे मैं भी कहूंगा और जब आम पार्टी के लिए दान और जितने कारकुन यही कहेंगे कि यहाँ की सियासत करनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ नहीं लेके आनी चाहिए, तो लेकिन प्रैक्टिकली हम इससे बिल्कुल भी इस पे नहीं चलते, क्योंकि हम जब घर में बैठते हैं, जब किसी मजलिस में बैठते हैं, जब कहीं आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप कहीं भी बैठते हैं, हर बंदा ये सोच ले कि वहां पर जाके बैठ के किसने बात की है कि अभी जो अभी इलेक्शन हुए हैं, अभी डेनमार्क की गवर्नमेंट बन चुकी है, उसके बारे में कभी भी किसी मजलिस में महफल में कभी बात नहीं हुई। जब भी जहां भी जाएंगे, शादी में जाएंगे, मजलिस में जाएंगे, महफल में जाएंगे या किसी भी घर में जाएंगे, तो वहां पर हमारी सियासत की बात ही करेंगे, पाकिस्तान सियासत की बात ही करेंगे। फिर हम कहते हैं कि हम उस सियासत को लहदा रखें, डेनमार्क की सियासत को लहदा रखें, हम यहाँ की सियासत करें, वहां की छोड़ें, और ये चीजें बिल्कुल कहने के हद तक तो बहुत अच्छी हैं। प्रैक्टिकली ऐसा मैंने तो इसके ऊपर कोई अमल होता नहीं देखा हुआ।

0: जो इस्लाम के बिल्कुल बहुत ही क्लोज है। तो इन चीजों से फिर लोगों के जो रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे, लोग जो है वो ये कह रहे हैं जी अच्छा जी ये शियों ने निकाला था, वो मनाजु कुरान वालों ने निकाला था, वो वहाबियों ने निकाला था, वो फलाना गिलानियों ने निकाला था, अब शाह निकालेगा, अब फलाना निकालेगा। ये आस्था आस्था हम सबको गर्दन से पकड़ लिया इन्होंने, और अब हमें ये एक ऐसी किश्ती में बैठा सवार कर रहे हैं
1: तो शाह साहब,
0: कि
1: ये
0: जिसके
1: काम
0: अंदर
1: हम क्यों
0: बेशुमार
1: करते हैं
0: होल्स
1: जिसपे
0: है।
1: कानून में सख्तियां आती हैं, हम ये काम क्यों करते हैं?
0: देखिए जी, हम ये काम इसलिए कि जो जिनके पास नॉलेज है वो नॉलेज नहीं देते, और जो मसाजिद या दूसरी जगह पे बैठे हुए हैं उनके पास ना यहाँ के ग्रीन लॉ आइन का कोई उनके पास नॉलेज है, ना उनके पास अपनी लोकल कम्युनिटी का कोई नॉलेज है। बस वो ये समझते हैं कि हम थोड़ी बहुत डेनिश बोल लेते हैं तो देखो जी हमसे ज्यादा, हमने पुलिस से बात कर ली है तो हमने सारा कानून समझ लिया है। हालांकि जो जो आप डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं उसके अंदर क्या आपको पता है कि इन्होंने क्या नया कानून निकाला है? इन्होंने कहा है कि अब जितनी भी डेनमार्क के अंदर कोई भी मजहबी मुसलमान जुलूस निकालेगा उसके अंदर काला झंडा नहीं वो लहरा सकते। वो कहते हैं ये काला झंडा जो है इस्लामिक, ये वो जो आइस है उसका है, डाइस वगैरह का उसका ये झंडा है, लिहाजा ये एक दहशतगर्द तंजीम है, हम इस पर नहीं आने देंगे। ये इनका सत्यानाश, इसको इनको किसने बताया? ये तो
1: शाह साहब,
0: इस्लाम
1: ये
0: का
1: लंबी
0: सबसे
1: बहस
0: पहला
1: हो
0: झंडा
1: जाएगी,
0: है।
1: ये इन्फॉर्मेशन होगी। अदनान, आपने बात सुनी शाह साहब की, आप क्या कहेंगे?
2: डॉक्टर साहब, इसमें दो राय हैं, दुनिया है कि मसले हैं, मसाइल भी हैं, और ये देखा जाए तो ये तो एक वो डिबेट है जिसके ऊपर पहले मैंने कहा था कि एक एक फोरम बनना चाहिए, और इस्लाम के हवाले से मैंने आपको जैसे मालूम होगा कल मैंने, जैसे आपको पता है एक फेस्टिवल था और वहां पर बड़े ये आए हुए थे, तो मैंने यही कहा था कि मैंने तो आपको नवंबर में ही कह दिया था 2025 में कि इस्लाम टारगेट में आएगा और हर चीज जो है उसको क्या कहते हैं इस्तेमाल किया जाएगा, और उस पर क्या कहते हैं आप लोग को वोट करना चाहिए। और वहां पे वही बात जो हमारे प्रोग्राम में भी एक हुई थी एक टाइम पे कि हम कोशिश करेंगे कि ये इंटीग्रेशन मिनिस्टर से मुलाकात की जाए और बात की जाए, पर उसके अंदर मसला ये है कि आप लोग इंटीग्रेशन मिनिस्टर के साथ बात तो कर लें प्रोग्रेस निकाल लें, मगर मसला ये है कि वो मसाइल हल नहीं हो सकते जो हम उसको खुद करने पड़ेंगे, और हम खुद गलतियां करते हैं इस मुल्क के अंदर तो फिर हम उस गलतियों का क्या कहते हैं नतीजा भी खुद भुगतते हैं। अब आप एक सिंपली बात देखें कि हम मुसलमान जो हैं हम चाहे ना तो एक चीज को बदल भी सकते हैं और हम चाहे तो एक चीज को क्या कहते हैं समझ भी सकते हैं। अब मैं एक आपको हवाला दे देता हूँ सिंपल वे में एकदम। हम जुम्मे की बात करते हैं कि जुम्मे का डिबेट चल रहा है कि इन्होंने क्या कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन किया है, मर्द आगे थे औरतें पीछे थी, ठीक है इनकी बात राय सही है, 24 घंटे बाद एक मैंगो फेस्टिवल हुआ उधर लोग सारे इकट्ठे थे। आप लोग ये क्यों नहीं फोकस कराते कि जब आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि 24 घंटे बाद आप लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है सबको, फीमेल भी उधर है, बच्चे भी उधर हैं, मेल भी उधर है, सब उधर है, आप इन चीजों को जोड़ के फिर आप एक क्या कहते हैं स्टेटमेंट बनाए। इन्होंने एक इवेंट का क्या कहते हैं शोर मचा दिया हुआ है, मगर इनको ये नहीं पता कि 27 जून से लेके 19 जुलाई तक 5 बिग इवेंट्स आ रहे हैं जिसके अंदर मुसलमान जो हैं करा रहे हैं ऑलमोस्ट, और वहां पे फीमेल्स भी और चिल्ड्रंस भी और मेल्स भी इकट्ठे हैं। मसला ये होता है कि जब आप डिबेट शुरू करते हैं ना तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि किस पॉइंटों पे होना चाहिए। ऑब्वियसली इस वक्त बहुत सारी चीजें टारगेट हो रही हैं क्योंकि उलनिंग इफेक्ट जो है वो पूरा खुल चुका हुआ है, और उसके अंदर हमारी अपनी भी गलतियां होती हैं, बड़ा टारगेट करते हैं। आप लोगों को ये भी समझना चाहिए कि आप जिस मुल्क के अंदर है ना आप किसी ओहदे पे है ना किसी जिम्मेदारी पे हैं, तो आप ये देखें कि आपने कोई लेसी आपने पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है, आपने वीजा अप्लाई किया हुआ है, आपने क्या अप्लाई किया हुआ है, तो आप ये गौर करें कि आप उस वक्त कौन सी बात करने लगे। کیونکہ آپ چھوٹی ساری غلط بات

0: कर देंगे ना तो आप उस टारगेट में भी आ जाएंगे। तो इंसान को ये देखना चाहिए, और मैंने आपको जैसे पहले भी कहा है कि जितनी जल्दी कोई ना कोई मुसलमान अपना एक फोरम लाएंगे, मुसलमान इकट्ठे होंगे, मुसलमान बैठेंगे, उतना ही जल्दी हम इस बात को क्या कहते हैं लेके जा सकेंगे। अब आप एक चीज गौर से देखें, हम मुसलमान ज्यादा इस मुल्क में, हम
1: अदनान
0: यहूदियों
1: भाई,
0: से
1: पहले
0: ज्यादा
1: मुसलमान को मुसलमान तो बने, नाम लिखने से तो मुसलमान नहीं होता।
2: है। ये मसला
0: दरअसल ये सबसे बड़ा मसला यही है कि इंसान एक दूसरे को टारगेट करना क्या कहते हैं ना बड़ा आसान होता है। हम अंदर से मुसलमान हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा एक क्या कहते हैं मेरे बारे में इस वक्त बड़ी सारी अफवाहें हैं, और ऐसी ऐसी अफवाहें हैं कि जिनको मैं देख के कहता हूँ कि कौन है। और जब मैं देखता हूँ ना कि वो बंदे ही मुसलमान कह रहे हैं, तो मैं ये सोचता हूँ किस बंदे को भी पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलना सबसे बड़ी गलत बात है इस्लाम में। इस बंदे को फायदा क्या है मेरे बारे में बोलने के लिए? और मैंने वही उस दिन उसको कहा, मुसलमान को, मैंने कहा मुझे बात बता, तू लाख बातें मेरे बारे में कर रहे, मुझे सारी इंफॉर्मेशन 2 मिनट में मिल जाती है, और मुझे कोई दुख भी नहीं है कि तुम कह रहे हो, क्योंकि मेरा तो क्या कहते हैं एडवर्टाइजिंग ही हो रही है। मगर मैंने कहा नेगेटिव और पॉजिटिव हो रही है, मैंने कहा वो तो मुझे कोई नहीं है। मगर ये बात आपकी सही है, जितनी देर तक हम अपने मुसलमान अपनी वैल्यूज अपनी चीजें सही नहीं करेंगे, उतनी देर तक हम लोग चीज नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, और मुझे पता है कि इस बंदे को पता भी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक मरकज का सदर था, ये एक मरकज का सदर था, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इसकी कंपनी थी एक, इसने बंदे पेपर के बैग रखे हुए थे, आप बात गौर से सुनना। वहां वो बंदे जब छापा पड़ा तो पकड़े जाने लगे थे, इसने उस उन उन बंदों को इससे मदद लेने की कोशिश की। इस बंदे ने अपना फोन बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, और वो बंदे बड़ी मुश्किल से बचे थे। जब ये मुझे दूसरी बार मिला, मैंने इसे पूछा, मैंने कहा बंदे आ, तुम इस तरह की चीजें करोगे तो मुसलमानों का क्या वैल्यू रहेगा? कहता है कुछ नहीं होता। मैं कहता तू मस्जिद बैठ के सदर है किसी चीज का, तू की गाल कर रहे? मैं कह बात तो सोच कि तुम एग्जाम्पल हो कि तुम मुसलमानों को रेस्पेक्ट कर रहे हो, तुम ऐसी हरकत करोगे तो दूसरे क्या सोचेंगे हमारे बारे में?
1: शाह साहब, आपने अदनान की बात सुनी। शाह साहब, आप और अदनान कानून कायदे की बात करते हैं, आप मसले मसाइल को कानून से हल करना चाहते हैं, तो शाह साहब क्या यहाँ ज़बरदस्ती या किसी को इस कानून कायदे को चैलेंज करके हम अपना आप बनवा सकते हैं?
2: देखिए, सबसे पहले जो इमरान ने बात की है ना कि यहाँ पे हमें या क्या होना चाहिए, और आपने बात की कि हमें पहले मुसलमान से मुसलमान होना चाहिए। आप 50 लीडर ले आए कोपेनहेगन से, पूरे डेनमार्क से पाकिस्तानी लीडर, आप उनसे बात करेंगे तो वो कहेंगे जी फलाना वजीर मेरा दोस्त है, फलाना मेरा मुझे चाहने वाला है, ये चाहने वाला। आप कल की और आज की फेसबुक पे मॉडर्न जो हमारा इंटरग्रेशन मिनिस्टर जो है उसकी आप सिनेगल के अंदर उसकी बातचीत देखें, उसने सर पे यहूदी टोपी पहनी है, ठीक है वो पहने, यहूदी छोड़ के वो इस्लामी पहने, लेकिन जो उसने बात की है और जो उसने एंड किया है, उसने कहा कि अब हमें जो आपकी फ्रीडम खत्म हुई है यहाँ पे, आप सड़कों पे खौफ में जब बाहर निकलते हैं तो खौफ ज्यादा रहते हैं, हम उसको खत्म करने के लिए आपकी अब हमें सामने अवॉइड करना चाहिए। जो ये लफ्ज है एक इंटरग्रेशन मिनिस्टर कह रहा है, जो कहता है जी कि मैं पाकिस्तानियों का बड़ा, पाकिस्तानी कहते हैं जी हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, भाई इससे बड़ा तो हिटलर भी जो था वो भी इस ओपन जो बात नहीं करता था, उसने भी आर्डर दिए थे कि यहूदियों को, यहूदियों के साथ जुल्म करें, हम आज तक उस जुल्म को भूल नहीं सके कि यहूदियों के होलीकॉस्ट हुआ, लेकिन अब ये जो मुसलमानों का होलीकॉस्ट हो रहा है इसको कौन, इसके ऊपर कौन आवाज उठाएगा? और डेनमार्क जो है ये इस वक्त पूरा जोर लगा रहा है कि ग्रीनलैंड का मसला जो है जो इंतहा से ज्यादा ऊपर चला गया है, और अब वो एक स्टेट ऑफ अमेरिका बन चुका है, ये उसके ऊपर उसको छुपाने के लिए ये जो सियासतदान है, ये सोशल डेमोक्रेट और दूसरे ये कीचड़ अब मुसलमानों पे डाल रहे हैं। और अगर मुसलमान अब ये समझते हैं, देखे सारे यूरोप में और अमेरिका में एक बात कॉमन हो गई है, उन सब ने यह कानून बनाया और अखबारों में भी लिख दिया, मीडिया पे भी लिख दिया कि सीरियन जो शाम के अरब हैं उनको हर सूरत इस इन मुल्कों से वापस जाना चाहिए, जाना चाहिए। इसी तरीके से अब वो लिबनानियों को भी लेके जाएंगे, दूसरों को। नेशनैलिटी खत्म करने का अख्तियार जब उन्होंने यहाँ की गई जो मेनली बोली है उनको दे दिया है, पुलिस को दे दिया है, तो फिर इसके बाद आपके पास अख्तियार क्या है? मैं अदनान से ये पूछता हूँ कि मैं इस मुल्क का डेनिश सिटीजन हूँ, लेकिन एज ए डेनिश सिटीजन मेरा कोई इख्तियार नहीं। मुझसे कभी कभी आके बोली सेल्स के बारे कह सकते हैं कि हम तुम्हें नोटिस देते हैं इस मकान से आप एक माह के अंदर आप बाहर हो, नहीं तो हम आपका सामान बाहर फेंक देंगे। पुलिस को कहते हैं कि भाई हमें इससे ये डर है, झूठा केस बन जाता है, मैं अदालत में नहीं जा सकता। एक माह के बाद वो मुझसे डेनिश नेशनलिटी ले लेते हैं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किस मुल्क में जाऊंगा, मेरे सामान का क्या होगा, मेरे मेरे घर वालों का क्या होगा? ये जो कानून है क्या ये पाकिस्तानियों को समझ नहीं आते? क्या वो बड़े खुश होते हैं कि आज मेरे बच्चों ने कैप पहनी है, आज हम इतना खर्चा कर रहे हैं, आज हम इंजॉय कर रहे हैं? क्या वो अपने बच्चों को ये नहीं पूछते कि भाई जो आप लोगों ने यहाँ हमारा सत्यानाश किया है, जो आप लोगों ने या हम लोगों ने खुद मिलकर सत्यानाश किया इस मुल्क के आइन का, जो सबसे बेस्ट आइन था। मैं ये अलानिया कह रहा हूँ, अदनान इस बात पे करेगा कि ग्रूम लॉ जो है डेनमार्क का, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये दुनिया का बेहतरीन कानून है क्योंकि ये उमर लॉ है। लेकिन इसके बाद जो इंगा स्टॉयबे ने कल तकरीर में ये कहा है कि मैंने 100 मेरे फादर सन को ये पता होना चाहिए कि अगर फ्लोटिंग यहाँ आई तो मैंने 114 नए कानून बनाए उनके खिलाफ। तो ये चीजें जो अभी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या हमारे लोगों के पास जुबान नहीं है? क्या हम इकट्ठे नहीं हो सकते?
1: शाह साहब, उन्होंने कानून क्यों बनाए?
2: इसलिए कि हम खुद गलत हैं, हम खुद गलत हैं, हम
1: ऐसा गिला किस बात का करें हम लोग?
2: नहीं तो अगर नहीं इकट्ठे होंगे तो वापस जाएंगे हम सब, ये तो नहीं छोड़ेंगे हमें। इतनान के आगे
1: शाह साहब एक और आसान आला, अदनान भी सुन रहे हैं तो चौधरी शाफे को बुला लेते हैं, नवाज शरीफ को बुला लेते हैं, जरदारी साहब को बुला लेते हैं, मौलाना फजल रहमान को बुला सकते हैं, डॉक्टर तैरुल कादरी साहब को बुला लेते हैं, नैम डोर भी जितनी, इमरान खान को भी जेल से निकाल के बुला लेते हैं, वो मसले हमारे हल कर देंगे
2: ना? उन्होंने एक ही बात सबने कहनी है, उन्होंने कहना जी इनको खड़े करके ना तो शू कर रहे हैं, उनकी लाशें जो है वो समुंदर में फेंक दे, हमें ये नहीं चाहिए। अगर वो यहाँ पे आके आपके मुल्क में आकर ठीक नहीं हुए तो फिर ऐसे लोगों को पाकिस्तान में भी जरूरत नहीं। उनका तो सिंपल ये जवाब होगा, वो तो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मसला ये है कि क्या आप जिनके बच्चे आज यहाँ पे एजुकेशन हासिल की है, क्या इसके लिए आप इकट्ठे हो सकते हैं? मेरा ख्याल में अदनान को मैं भी लास्ट ईयर से सुन रहा हूँ, ये बड़ी अच्छी बात करता है। क्या आज तक किसी भी काउंसलर ने जो इलेक्ट हुए या जो नहीं इलेक्ट हो सके वो इस बात पे बात कर रहे हैं? अब आप ऐसी स्क्रिप्ट आ रही है, ऐसी चीजें आ रही है कि ये एक ग्रुप है, एक ग्रुप है जिसके अंदर कुछ पाकिस्तानी भी शामिल है, कुछ अफगानी भी शामिल है और इंडियन भी शामिल है। और ये मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, ये लोग जो है फेसबुक पे मुख्तलिफ नाम रख के मुख्तलिफ अपनी आइडेंटिटी को खत्म करके ये लोग जो है ये मुसलमानों के खिलाफ बातें कर रहे हैं और हम लोग उन्हीं को जवाब दे रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि ये डैनिश की फोटो लगी हुई है, ये डैनिश। मैंने एक दिन एक डैनिश को कहा कि बेहतर यही है कि हम एक जगह मीटिंग करें, मैं तुम्हें काफी पिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, जो खाएगा केक खिलाऊंगा, हम वहां बैठ के बात करते हैं। तो उसने मुझे कहा कि फैन तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया? मैंने कहा तुम फेसबुक पे हो। कहता वो तो मेरी है ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल उसके, मैं तो सारा दिन काम करता रहता हूँ, मैं तो है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये लोग इनके जो आइडेंटिटी है वो मिस यूज कर रहे हैं।
1: अदनान, आपने शाह साहब की बात सुनी है, अदनान आपको माशाल्लाह एक्टिव है, इस मुल्क में पैदा हुए, इस मुल्क में आप रहते हैं, इस मुल्क में सारे काम आप कर रहे हैं, इस मुल्क का आप सियासत का एक हिस्सा हैं। अदनान, आपको कभी किसी ने नमाज पढ़ने से मना किया, कभी किसी ने रोज़ा रखने से मना किया, कभी किसी ने ज़कात देने से मना किया,
0: नहीं राजा साहब, मुझे किसी इंसान ने नहीं मना किया।
1: तो फिर हम लोग क्यों हर चीज को उठा के ले जाते हैं, जब हमें इसराइल ने ये कह दिया, हमें अमेरिका ने ये कह दिया, हमने फलाने ने ये कह दिया, हमने फलाने ने ये कह दिया। मुझे कभी किसी ने नमाज पढ़ने से मना नहीं किया, किसी मस्जिद में मजहबी अदारे में जाने से मना, कल्चर सेंटर में जाने से मना नहीं किया, कभी किसी ने मुझे रोका नहीं है। तो जब हम जिस तरह के शाह साहब फरमा रहे थे कि हम इजाज़त किस चीज़ की लेते हैं, हम खुद कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो ये अनासर पैदा किए जाते हैं, ये अनासर पैदा होकर सिस्टम को दबा करते हैं। हम लोग यहाँ डनमार्क की सियासत करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी सियासत को उठाकर यहाँ का लेकर आ जाते हैं, हम आपस में डिवाइड हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इखलाफात करते हैं, उसके बाद हम गिले कर शिकवे करना शुरू कर देते हैं। जी अदनान
0: साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात होती है, मैं आपको एक मोटी सारी एग्जाम्पल बात बता देता हूँ। कल हम जैसे गए हुए थे मैंगो फेस्टिवल पे, वहां पे दूसरे ग्रुप वाले आ गए थे और एक ग्रुप वाले कहते हैं आप लोगों ने बहुत सारे इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं, तो ये तो मैं उसका मुंह देखने लग पड़ा। तो एक साहब सारे मेरे साथ थे, मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, हम लोग अपनी मेहनत से कर रहे हैं और हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, हम किसी को कुछ कह नहीं रहे, तो फिर मसला क्या है कि हम 6 करें कि 10 करें। मैंने कहा मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि एक तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इकट्ठा करें, लोगों को किसी प्लेटफॉर्म पर लेके आए, और फिर आप पूछ रहे हैं कि हम 6 कर रहे हैं ना 10 कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे इस बात की समझ कोई नहीं आई, और हम छह इसलिए कर रहे हैं कि कोई और करेगा तो फिर हम पीछे हट जाएंगे, मगर आप आए तो सही ना कि लोगों को इकट्ठा करें, लोगों को किसी प्लेटफॉर्म पर लेके आए। मैंने कहा हमारा कोई मकसद तो नहीं है कि हम पूरी मार्केट लेना चाहते हैं, हम पूरा कब्जा करना चाहते हैं, या कोई चीज हम करना चाहते हैं। मैं क्या, हम तो एक बस क्या कहते हैं लोगों को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या कहते हैं चीजें होती हैं, इन्वेंट्स होते हैं, ये होता है। तो ये बात आपकी सही है कि हमें सबसे जरूरी ये है कि हम यहाँ पे फोकस दें और यहाँ का क्या कहते हैं देखें कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ना फोकस दिया तो हम खुद मुसीबत में पड़ गए।
1: शाह साहब आपने अदनान की बात सुनी, अदनान बड़ी जो है पते की बात उन्होंने की है कि हम खुद जो है फोकस हो जाएंगे।
2: ये बात मैं काफी अरसे से कर रहा हूँ, मैं आपकी बात के जवाब देता हूँ कि यहाँ हमें कोई नमाज पढ़ने, यहाँ हमें यहाँ पे कोई अपनी फ्री को कोई रोक रहा नहीं, लेकिन जो लोग सियासत में आए हैं वो इस वक्त जो पार्लियामेंट और जो पार्लियामेंट के पीछे जो ग्रुप बैठा हुआ है वो रैशिज्म से भरा हुआ लोग है, उनको उनको ये चीज पता है कि इस मार्केट के अंदर, जैसे इन्होंने मैंगो फेस्टिवल की बात की है, उनको पता है कि यहाँ पे मैंगो ही बिकने हैं, यहाँ पे वैन मलून नहीं बिकने, लिहाजा वो पूरी कोशिश के साथ हर पार्टी के अंदर बगैर ये सोचे समझे कि इस पार्टी का मंशूर क्या है, ये पार्टी कैसे चलती है, इसकी क्या विस्टेक्स है, वो इसको एक साइड पर रख के वो उसके अंदर एक्टिव हो जाते हैं और फिर अपने अपने दोस्तों के साथ मिलके वो उसको सामने लेके आते हैं। देखिए मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई कि हमारे कोई भी जीशान हो, दान हो, कोई भी बच्चा हमारा यहाँ पे आता है वो लोगों को ये मोटिव निकाल रहा कि देखो भाई आप पार्टी हमारी पार्टी में आए, यहाँ पे इसको ज्वाइन करें, डैने सियासत में आज आप मेंबर बने, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप यहाँ के लोकल जो क्रीस है उसके अंदर बैठे कैसे एक्टिव होना है, फिर फलके थिंक के पार्टी के जरिए फलके थिंक के अंदर जो उल है वहां पे वो बैठे, वहां पे उनको एजुकेशन हासिल हो के असल सियासत होती कैसे है, फिर उसके बाद जब वो इलेक्शन आए तो वो पूरे ट्रेंड होकर वहां पे वो इलेक्शन के लिए तैयारी करें। अब मसला ये होता है कि हम लोग सियासत में तो आ जाते हैं, एबीसी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैं इलेक्ट हो जाता हूँ तो मैं तो उम्बसमैन जैसे कहते हैं, मैंने तो वो करना है, उम्बसमैन कहते हैं कि नहीं तुमने इस पर साइन करने करने है, अगर नहीं करोगे इसके ऊपर डिबेट कराओगे, ये करोगे वो करोगे, तुम्हारे लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी, फलानी पार्टी तुम्हारे लिए ये कर लेगी, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा आप घर के तो उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं, कहते हैं ठीक है मैं घर जाता हूँ, मैं जाकर सोता हूँ, आप मैंने अपनी आजी लगा लिया, मैं या और ना ही मैं शामिल हूँ। तो ये चीजें जो है, जब तक एक सियासतदान, जैसे अभी अदनान इतनी गर्मी में टाइम दे रहा है अब आपको, इसी तरीके से जब सारे सियासतदान एक पेज पे नहीं आएंगे, बगैर लड़े बगैर किए इन चीजों को फोकस करेंगे कि देखो कहाँ मसला शुरू हुआ था बिल वैरसा से, अब क्या हो रहा है कि ये बड़े बड़े ग्रुप्स को ब्लॉक कर रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं, तो कल को ये अगर सबके ऊपर ये इस तरह कर लेते हैं। आज एक था क्या नाम है, बहुत ही जानने वाला फलके थिंग का मेंबर, उसका मुझे नाम भूल गया, वो बड़ा एक्टिव है फेसबुक और सोशल मीडिया पे, उसने आज ये कहा है कि ये जो अजान है, उसने मॉडर्न मैसन स्मिथ का हवाला देकर ये बात की, ये जो अजान देते हैं कल्चर सेंटर या मस्जिदों के अंदर, इसको भी हमें बंद करनी चाहिए। तो जब इस तरह की बातें होनी शुरू हो जाएंगी, इस तरह की चीजें ये करनी शुरू कर देंगे, और ये इसको कुछ लॉ तो बन चुके हैं और कुछ लॉ हो साथ ले आए, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? हमारे यंगस्टर जो है उन्होंने तो कह रहे हैं जी ठीक है, हम काम पे जाते हैं आ जाते हैं, रात को सारी नमाजें इकट्ठी करके घर में पढ़ लेते हैं। अब जो बूढ़े बूढ़े हम लोग हैं,
1: तो उम्र जब आप लोग आए थे तो आपको ये प्रॉब्लम थे
2: जी, उस वक्त हम लोग झूठ नहीं बोलते थे, कोई जाके किसी की कान पूछी नहीं करता था, कोई गब्बियत नहीं करता था, कोई ये नहीं कहता था मैं पीछे बड़े मरबे छड़ के आया, मैं बड़ा रईस हूँ और ये दूसरा जो है ये कौन है। ये हमारे लोगों ने खुद ये खराब किया, इन्होंने आकर सब कुछ जो है मत जो है ये दूसरों के हाथ में कर दी, और वो मत ऐसे लोगों के हाथ में चली गई है जिनको एबीसी का पता ही नहीं है, और वो इससे इससे जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप हैरान होंगे, इदनान को इस चीज का पता है कि अभी इतने सारे वेस्ट साइड के अंदर और कोपेनहेगन के अंदर इतने सारे केसेस पड़े हुए हैं जिससे हम और ज्यादा बदनाम होंगे, और वो जब सामने हो जाएंगे तो फिर, अभी तो ये है कि अब ये नहीं लिखते है कि ये फलाना मुसलमान था ये फलाना मुसलमान था, ये अब वो ये लिखते है कि ये एक डेनिश सिटीजन था या फलाना था, उसको ये सजा हुई या उसका नाम लिख देते हैं। लेकिन अगर ये पुराने तरीकों की तरह लोगों के आइडेंटिटी करने शुरू कर दी कि ये फलाना फलाना था, तो इस तरीके से फिर हमारी बदनामी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो कोशिश ये कीजिए कि जैसे इदनान ने कहा कि हमें जितनी जल्दी हम एक्टिव हों, इन सारे पुराने चीजों को सामने रख के इनका हल निकालना चाहिए, और एक ऐसा थिंक टैंक यहाँ पे होना चाहिए जिसके अंदर मेजॉरिटी लोग, हर तकबे से लोग हों, और उसके अंदर डैनिश भी हो, और उसके अंदर हम फिर जो है वहां पे बात निकाले और उसको हम अपनी पावर बनाए। क्योंकि जो सिनेगाल के अंदर आज मैं लोगों को बताऊं, सिनेगाल जैसे हमारे मस्जिद है चर्च है, इसी तरह इनका यहूदियों का है, और कोपेनहेगन में जो उसे आज मॉडर्न ने बयान दिया है इंटरग्रेशन मिनिस्टर ने, और जिस तरीके से वो तैयार होके आया, जिस तरीके से उसने कैप पहनी, जिस तरीके से वो उसने अपनी स्पीच को एंड किया है, इससे ये साबित होता है कि यहाँ की जो ज्यूइश लॉबी है वो डेनिश लॉबी के साथ मिलके हमारे लिए तकलीफात जो है उनको हाईलाइट कर रहे हैं।
1: निशा साहब आप देखे ना कि मिमी याकूबसन हुआ करती थी सीडी की पार्टी की, जो उनके पहले याकूबसन थे उनके वालिद साहब थे, लेकिन उन्होंने तो कभी उन्होंने तो हमेशा मुसलमानों के हक में बात की, जितने मुतालबात होते थे ओवरसीज के गैर मुल्कियों के उसके साथ वो तावन करते थे। ये हलाल गोश्त का जो मसला हुआ किसने सबसे ज्यादा तावन किया? तो शाह साहब पॉजिटिव चीजें पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव मैं करूँ कोई करे जायद बकर करे नेगेटिव होती हैं। अदनान की तरफ चलते हैं, अदनान एक सवाल है आपके लिए जो मुझसे पूछा जा रहा है कि ये जो फेस्टिवल मैंगो फेस्टिवल होते हैं, पहले पाकिस्तानी फैंगो फेस्टिवल होता था, उसमें आप देख रहे हैं आपको कोई झंडा नजर नहीं आता है, ना ही कोई झंडियां नजर आती है, उसमें एक सिर्फ कारोबार नजर आता है, और उसके पीछे भी जो तंजीमात होती है वो भी किसी अपनी तंजीम के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए ये सारा जो है स्टेज सजाया जाता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे
0: साहब? इसके अंदर तो एक बात देखा जाए तो मैं एक बात कहूंगा कि ये अपने अपने पर डिपेंड करता है। हम लोग मैं दूसरों पर कॉमर्स नहीं करना चाहता क्योंकि वो उनकी अपनी राय है। हम लोगों का मकसद एक ही होता है, ये जो हमारा जो मेन मकसद ये है कि हमने एक जगह ली हुई है जहाँ पे हम बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं, और ये जगह हमने हो गए करीबन हमें काफी साल हो गए हैं, इसके अंदर पहले बनी फिर काफी चीजें चेंज थी, तो वो फिर हम उन बच्चों के लिए हम करते हैं कोशिश कि हर साल कोई ना कोई इन्वेंट हो जाए उनके लिए, लोगों के लिए, और ये जो लोग होते हैं, और उसके लिए हम करते हैं। हमारा अपना इतना प्रॉफिट नहीं होता, और हम लोग एंजॉयमेंट के लिए कराते हैं और स्पीकी पर अटल टल दिखाने के लिए। झंडे का रहा, वो तो हम ला भी सकते हैं, वो हमें कोई वैल्यू नहीं है। हमारा नाम पाक डैन है, और हम दोनों झंडे हमने इकट्ठे रखे होते हैं हमेशा। डेनिस झंडा भी रखा होता है, पाकिस्तानी झंडा भी रखा होता है, क्योंकि जैसे हम अब तो पहली जनरेशन तो है अभी तक, तो अगली जनरेशन तो यहाँ की बॉर्न है ना, उसके बाद तीसरी चौथी। तो सो हम अपने इवेंट्स करते हैं, और इंशाल्लाह ताला हम 11 जुलाई को पहला करेंगे 2025 26 को, सॉरी, और 1 अगस्त को करेंगे 2026 को। और दोनों इवेंट्स हम लोगों के लिए करेंगे, और चाहेंगे कि लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, और हमने सारे अरेंजमेंट जो है ना वो देख के करते हैं, और हम सारी अथॉरिटी के साथ मिल के करते हैं। हमने सबको रबते किए होते हैं कि हम ये इवेंट करने लगे हैं, कोई आपको गिला शिकवा है या कोई आपकी बात है तो हमें बता दें। तकरीबन हम हर पार्किंग का भी इशू निकालने की कोशिश करते हैं, इतने इशू ना बनने कि हमारी कम्युनिटी को कोई मसला पड़े। तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी प्रिपरेशन की तरफ आते हैं, और हम पूरी तैयारी से आते हैं, और ये नहीं है कि हमने पहले नहीं कराया, हमने इंशाल्लाह ताला पिछले साल भी कराया, और काफी पब्लिक थी। आई डोंट थिंक सो कि हमारी कम से कम 5,000 से तो कम पब्लिक नहीं थी। ये तो हम हमारी जगह की वजह से क्या कहते हैं प्रॉब्लम थी
1: लेकिन
0: पिछले साल,
1: अदनान
0: मगर
1: ये जो
0: इंशाल्लाह
1: स्टॉल लगते हैं तो स्टॉल तो चलें जो अखराजात वो देते हैं थोड़े देते हैं ज़्यादा देते हैं ये तो कराने वालों को पता होता है, लेकिन वहाँ चीज़ें महंगी बिकती हैं आम लोगों से, बाजार के रेट से ज़्यादा चीज़ें महंगी बिकती हैं वहाँ।
0: सब ये तो हम नहीं ना, हम डोमिनेंस नहीं करते कि लोग किस प्राइस पे चीज देना चाहते हैं। ये लोगों की अपनी मर्जी होती है, और हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आप इतनी की चीज बेचें, क्योंकि इसमें ये भी है कि लोग हमें फिर कहते हैं कि हमारी चीज नहीं बिकी, तो वो तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आपकी क्या कहते हैं जो नसीब में है वही आपको मिलना है, जो आपके नसीब में नहीं है वो आपको नहीं मिलना। तो हम यही कहते हैं लोगों से कि एक जनरल प्राइस रखें और जनरल चीज रखें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी कहते हैं कामयाबी हो जाएगी।
1: अदनान आखिर में आप क्या पैगाम देंगे? हर चीज़ का हल होता है ना, देखें डिबेट भी की जाती है, तनकीद भी की जाती है, सारी चीज़ें होती हैं, उसका एक पॉजिटिव हल भी तो होना चाहिए।
0: सब देखिए, हर चीज का एक ना एक हल होता है। इंसान नियत रख लेना, तो नियत से क्या कहते हैं ना हर चीज हो सकती है। और मैं दही दिल्ली से कहूंगा कि हम सब मिल जाए ना तो हम मुसलमान बहुत स्ट्रांग हैं, हमारे दिमाग भी तेज हैं, हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली तो हम पाकिस्तानी हैं, हमारे में तो क्या कहते हैं एक विल है, और पाकिस्तानी हो, तुर्की हो, अरबी हो, बॉस्नियन हो, फलस्तीनी हो, हमें अब अपनी आवाज उठानी चाहिए, और हमें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए कल्चर के लिए। ये जैसे अब लोग पटाखे चलाना शुरू हो जाते हैं, मेरे पीछे ही चल रहे हैं, तो लोगों को ये भी शूट करना चाहिए कि मुल्क के रूल्स क्या है। अब ये जो माशाल्लाह से मेरे पीछे पटाखे चला रहे हैं, इनको पता ही नहीं होगा इस मुल्क का रूल क्या है, तो ये भी चीजें बंदे को नजर में रखनी चाहिए।
2: वो बात यह है कि जब आपने अल्पसोन में किया था प्रोग्राम, तो उस वक्त मुस्लिम एम्बेसीज के भी लोग आए थे और मुस्लिम दूसरे भी आए थे। मसला जो है, जो डेनिश हमसे, जो डेनिश रिक्वायरमेंट हमसे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपने एक लोकल ऑर्डरिंग में रहते हैं, आप लोग हमारे साथ उस तरीके से नहीं रहते जिस तरीके से आप 70s 80s 90s में थे। वो उनकी बात कुछ असूली तौर पे भी ठीक है कि जब हम फैक्ट्रियों में काम करते थे, जब हम दूसरी जगह पे काम करते थे, तो हम फोरमैन को, दूसरों को घरों में बुलाते थे, खाना खिलाते थे, तल्लुकात, ये राजा साहब खुद यूनियन के मेंबर हैं, इनको पता सारा कुछ के कैसे होता था लोगों के साथ। अब हम लोग जो है एक लोगो ऑर्डरिंग में हम घुस गए हैं, मैंगो फेस्टिवल हो रहे हैं तो वहां पे सिर्फ चंद एक लोगों को छोड़ के बाकी सारा अपने ही हजूम होगा। तो उन्होंने ये कहा है कि जो आपकी औरतें हैं वो ये क्लियर करती हैं कि जब उनके ऊपर प्रॉब्लम होती है, उनको डिवोर्स चाहिए या उनको, तो वो ये कहती हैं कि भाई देखे आप लोग हमें पीछे रखते हैं, हमें हर दफा पीछे रखते हैं, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, हम लोग जन्मा। तो ये जन्मा के अंदर और इस्लाम के अंदर एक चीज है कि यहाँ पे मर्द औरत के हकूक बराबर के हर एक आदमी जो है वो लेकर चलता है। तो हमें तो 70s, 80s, 90s में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी, 2000 के बाद जब ये अरबियों ने ओवरटेक कर लिया हमें, मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद जब हमारे पाकिस्तानी पीछे हट गए और हम लोग पाकिस्तान की सियासत को उजागर करने लगे, तो आज ये जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं ये इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि वो ये तो नहीं कहते कि पाकिस्तानी ये कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान। अब जब ये इस्लाम की बात कर रहे हैं, इस्लाम को गालियां दे रहे हैं नौज़बिल्लाह, तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? मुझे इसके लिए ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, मेरे साथ लोगों को होना पड़ेगा, ताकि हम एजुकेशनली और डेमोक्रेसी के जरिए, जो डेमोक्रेसी डेनमार्क में खत्म हो चुकी है, उसको उजागर करना चाहिए, हमें डिबेट्स करनी चाहिए। आप लोग यंग आदमी हैं, आपको चाहिए कि डेनमार्क को एल्बर्सोन में डिबेट्स कराएं, 50 आदमी हो, 30 आदमी हो, पाकिस्तानी पढ़े लिखों को बनाए, जो है यहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज है, जो पॉलिटिशियंस है, उनको डांसों को बनाए, ताकि उनको पता लगे कि इस्लाम जो है वो गलत नहीं है, वो उसके नजरियात गलत नहीं, ये हमारे अपने जो टॉकिंग है, हमारे अपने नजरियात जो है, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हम लोग गलत है। तो क्या इस पे आप अग्री नहीं करते? यही तो डैनिश चाहते हैं कि हम इनसे करें। ये जो असल डैनिश है वो हमारे खिलाफ नहीं है, ये वो डैनिश है जो जो इस वक्त एक डैनिशों का ग्रुप है जो फेसबुक और सारे सोशल डेमोक्रेट के साथ वो ये काम कर रहा है। इसमें 16-17 वो मुर्तद हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ा है और जिन्होंने जुमे वाले दिन भी यहाँ डैनिशों के साथ मिलकर तो हमारे खिलाफ बात की है। ये जो नजरिया रख रहे हैं कि हम लोग जो है होमोसेक्सुअल्स के खिलाफ है, हम फलानों के खिलाफ है, भाई एक दफा 80s में ये डिबेट हुई थी तो मैंने बैंसा के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए, कहा था कि देखो तुम लोग तो ओनली 5 मिलियन हो, हम पाकिस्तान में हो सकता है कि करोड़ों की आबादी है, वहां पे तो हो सकता है 4-5 मिलियन ऐसे लोग हो, हम लोगों के खिलाफ नहीं जाते, लोगों का अपना पर्सनल मैटर है वो क्या करे, हम तो चलते हैं अपने अपने आप को देखते हैं, अपने असूल को देखते हैं। हम यहाँ पे जब हम टैक्सी चलाते हैं तो टैक्सी के अंदर हमारे साथ रोजाना ये लोग बैठते हैं, ना वो हमारे दीन को कुछ कहते हैं, ना हमें कुछ कहते हैं, ना हम उनको कुछ कहते हैं, सर्विस दे के हम छोड़ देते हैं।
1: तो शाह साहब असल मसला क्या है?
2: असल मसला ये है कि जैसे हम टैक्सियों में बोलते थे,
1: शाह साहब अदनान को टाइम दीजिएगा।
0: जी मैं दो बातें कहूंगा कि आपकी जो नेशन है ना, जो यहाँ की जो नेशन आ रही है वो बड़ी मिलजुल होगी हुई है इनके साथ और उनका बड़ा असर रिलेशनशिप है, कामों पे भी और स्वास्थ्य पे भी। ये बात दूसरी बात दुरुस्त है कि हम जब ये फेस्टिवल करते हैं तो गोरे नहीं आते, मगर हमने देखा कि हमारे जो इंशाल्लाह ताला इस बार हम जो मैंगो फेस्टिवल कर रहे हैं और जो हमने 2025 में किया था, मैं आपको बात बताऊं तो बड़े गोरे आए और उसमें एजुकेशन मिनिस्टर आया था और ये मॉन्टोस को भी आया था और इनकी वजह से और मेरे पास इनकी मेरे ख्याल से तस्वीरें भी हैं जहां तक मुझे याद है और ये सारी तस्वीरें वगैरह हम इंशाल्लाह ताला इस बार लगाएंगे अराउंड द वर्ल्ड। हमारा प्लान ये भी है कि हम डेनिस जो तंजीमें हैं एम्बेसडर मनी जो है उनके साथ भी रबते हैं और दूसरों के साथ भी रबते कर रहे हैं कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें और हमारे इवेंट में आए, क्योंकि जितनी देर तक हम डेनिस और फॉरेंस को इकट्ठा नहीं करेंगे उतनी देर तक ये हाल नहीं है। और देखा जाए तो हमारे मैंगो जो है ना वो डेनिस बड़े खाते हैं, तो सो हमारा पूरी स्कीम है कि हम डेनिसों को भी इनवाइट
2: करें। आपको यहाँ स्टॉप करूंगा, आप मुझे बताएं आप इसको मॉडल को बोस्को को वहां बुलाएंगे तो आप उससे क्या डिबेट करेंगे, आप उसको क्या बताएंगे, कहेंगे जी आए हमारे मैंगो खाएं वाह वाह, उसके उसका रेट बढ़ाएंगे, उसके जो देखने वाले डैनिश है उसको ज्यादा वोट दें। भाई असल मसला ये है कि जिस पाकिस्तानी से मैं बात करता हूँ वो एक ही यही राग लगाता है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत उसकी फोटो है, भाई जब इसने अभी ये सेनेगाल में गया है क्या इसने ये कहा है कि मैं मुसलमानों को और आपको और सबको बैठा कर एक डिबेट करते हैं, जो असल मसला है उसको खत्म करते हैं? मैंने तो नहीं आज तक देखा कि सिवाय एक इंसिडेंट हुआ है पूरे डेनमार्क के अंदर इस सारे अरसे में, और वो भी गलत हुआ। आज तक हम यहूदियों के साथ ही काम करते रहे हैं, यहूदियों के साथ ही बैठते बैठते रहे हैं कि कोई यहाँ पे कोई इस तरह की बात हो, तो ये क्यों इस तरह की बातों को आप लोग यंगस्टर जो हाईलाइट क्यों नहीं करते, क्यों आप लोग ये कहते हैं जी आएंगे तस्वीरें खिंचाएंगे। इससे पहले भी मैंने बेशुमार पुराने जो सियासतदान है उनसे एक जी फलाना मिनिस्टर तो मेरा बचपन का दोस्त है ना जी, बस जो बात कहते हैं, लेकिन वो मिनिस्टर जब टीवी पे आता है, जब वो फेसबुक पे आता है, तो वो जो ऑल फॉर वो इस्लाम के और मुसलमानों के खिलाफ बकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे 4 लाख से ऊपर मुसलमान है उनकी हैसियत जो है वो 10 आदमियों से ज्यादा नहीं है।
0: नहीं शाह, इसमें मैं ना आपको एक बात बता दूं, इसमें ना दो चीजें हैं। एक तो ये है कि हमारा जो थिंक टैंक है ना वो कमजोर है, क्योंकि मॉन्ट्रस को कोई ऑफिशियल इनविटेशन यूएस सोसाइटी ने दी थी और उनने इसको प्रॉपरली बुलाया था और उसने फिर अपने कैलेंडर में से टाइम दिया था। जब मुझे मॉन्ट्रस को मिला और जो उसने हमें कहा, उसने कहा कि मुझे अभी तक पाकिस्तानी कम्युनिटी से, आपका फॉरन कम्युनिटी से, मेरा मुसलमान कम्युनिटी, पता नहीं ये DMU वाले जो हैं इनको ये खत लिख के इससे मांगनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता अब DMU ने खत इसको लिखा है कि नहीं, क्योंकि मैं DMU में नहीं, उनको भी खत लिख के इससे क्या कहते हैं बातचीत करनी चाहिए कि हमारे पास आओ, हम भी तुम्हें मिलना चाहते हैं, हमारे भी इशू हैं, हम भी तुम्हारे से डिस्कशन करना चाहते हैं कि हम भी सेफ फील नहीं करते। और ये इस तरह DMU को ये करना चाहिए और इसको प्लेटफॉर्म में करना चाहिए। हमारे इन्वेंट में वो आए, हम उससे बात डायरेक्टली करते हैं। जैसे मच्छी अच्छे साल आया था, मैंने उसे पकड़ के उसे कहा था वहां पे विटनेस भी है, मैंने कहा ये जो पॉलिसी चल रही है ये हमें पसंद नहीं है, और ये जो हार्ड लाइन तुम स्टेटमेंट दे रहे हो ये मुझे पता है कि 3 मंथ बाद जब इलेक्शन आना है ना तुम लोगों ने कोई ना कोई काम करना है। और आपको मैं बात बता दूं, ये राजा साहब को पता, आपको पता है कि 1 मंथ बाद हमारा मैंगो फेस्टिवल अगस्त में हुआ था और सितंबर के अंदर रास्को स्टॉक लॉन्ग आ गया था, तो मुझे एग्जैक्टली पता था कि इनने कुछ ना कुछ करना है और ये इसी तरह की हरकत करेंगे। अभी एक परसों चौथ इसकी अभी फेसबुक पे थोड़ी देर पहले क्लिप आई है, ये चौस्तकोवी की है और वहां पे इसने फलायर साम फोन के बाद बात की है और उसके बारे में मैंने इसको एक मेल लिखी है, इसकी सेक्रेटरी का जवाब मुझे आ गया हुआ है। अब हम दोनों का इंशाल्लाह ताला इरादा है कि हम समर फेरिए के बाद मेरी इससे मुलाकात होनी है, मेरी होनी है, मैंने इससे रिक्वेस्ट किया अपनी पार्टी की तरफ से, इसमें मुझे हाँ की हुई है। जब मैं इसके पास जाऊंगा मैं सारे पॉइंट्स लेके जाऊंगा अपने, मैंने इसे यही पूछने के मुझे आज तक ये समझ नहीं आ रही कि आप इतना टारगेट क्यों कर रहे हैं, मसला क्या है। मसले दो बंदों के मसले होते हैं आप पूरा कमेटी ले जाते, अब जिनके मसले हैं उनके मसले होने चाहिए। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, सबको पता है हम हाइट कमून में रहते हैं, पास रहते हैं, उसके मेयर ने आज कहा है कि ये जो प्रॉब्लम हमें टास्ट में पड़ी हुई है आप उनके साथ पंगा नहीं ना डालेंगे तो आपको कोई मसला नहीं, आपने बस पंगा नहीं डालना उनके साथ, उनको रहने दे वो जो मर्जी कर दे, क्योंकि वो पुलिस का काम है कि पुलिस उनको कैसे टैकलिंग करती है कैसे। अब मीडिया और डेनिस उनके बारे में बार बार लिखेंगे, बार बार उसको क्या कहते हैं गुजालेंगे, तो मसले ने बड़ा ही होना है, मसले ने छोटा नहीं होना, तो इसलिए मसाइल को हल करने की जरूरत होती है। हम इन लोगों को इसलिए बुलाते हैं दो वजह से, एक कि वहां पे जितने लोग हैं वो पकड़े वहां पे इनको और उनको कि हमें ये चीजें पसंद नहीं, ताकि जितने ज्यादा लोग उनको कहेंगे उतना ही ज्यादा हमारा क्या कहते हैं इंपैक्ट होगा। और इस वक्त ये जितने मिनिस्टर बैठे हुए हैं, मॉन्ट्रस को हो जाए, जस्टिस मिनिस्टर हो जाए, दूसरे भी कुछ और हो जाए, उनके दिमाग में इस वक्त क्या कहते हैं एक टारगेट बना हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि उनने टेंस वर्ल्ड कप 25 वाले हर चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, और जितनी देर तक हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे हम इसको काम नहीं कर सकते।
1: शाहब अदनान ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब तक एक प्लेटफॉर्म में जमा नहीं होंगे, अपना तशख्स बरकरार रखते हुए बात नहीं करेंगे, तो मसाइल तो शाहब हल नहीं हो सकते। इस तरह
2: राजा साहब बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल में पॉइंट ये है कि हमें लोकल जहाँ लोकल है, जहाँ जहाँ लोकल हम रहते हैं, हमें एक्सपर्टीज को लेके चलना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि एक बंदा पीएचडी है और उसने पीएचडी की है बायोकेमिकल में या किसी और चीज में, और वो कहे जी कि मैं डेनिश कानून को समझता हूँ, मैं सियासतदान हूँ, मैं ये चीजें यहाँ नहीं चलती। यहाँ पे चलना चाहिए कि आप कर रहे हैं क्या, क्या आप किस किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, आप आए, आपके पास जो लॉ गिवनिंग है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके उसके अगेंस्ट जो लॉ बने हुए हैं। जैसे कल इंगा साहब ने अपनी तकरीर में यह कहा कि 114 कानून मैंने यहाँ पे इतने सख्त बनाए ताकि इनको जितनी ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो वो हो। हम शुरू कहाँ से कर सकते हैं? हम शुरू कर सकते हैं, ये आप इस चीज के जिंदा गवाह हैं कि जब पोलराइजेशन की बात हुई थी तो बाहर खड़े थे, अभी अभी हम अंदर ही खड़े थे लेकिन बाहर थे, हॉल से बाहर थे, तो आप सभी बेशुमार जो फास्ट चर्च के जो पादरी थे और दूसरे लोग कंसर्न, वो आपसे भी बात कर रहे थे, मुझसे भी कर रहे थे, दूसरों से भी, तो उनका एक ही जाविया था कि आप लोग हम लोगों से डिबेट क्यों नहीं करते, आप अवाम में क्यों नहीं आते, आप सियासतदानों के पास जाएंगे
1: साहब। ये बात आप क्लियर कर चुके हैं कि हर चीज के जो मसले मसाइल है वो हमने खुद पैदा किए हैं। शाह साहब मसले मसाइल मैंने आगे कहा था, मैंने किसी और नज़रिए से नहीं कहा था। हम चौधरी परवेज इलाही साहब को बुला लेते हैं, चौधरी शाफे साहब को बुला लेते हैं, नवाज शरीफ साहब को बुला लेते हैं, जरदारी बिलावल को बुला लेते हैं, हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जब हम ये काम करना चाहते हैं तो शाह साहब ये हालात पैदा होंगे।
2: नहीं जी, उन्होंने एक ही लफज कहना है, उन्होंने कहा तानू तक कढ़िया सी मुल्कू ते तुसी ओथे भी जाके उंजे दे रहे हो, लिहाजा तुसी इत्थे ही रहो।
1: शाह साहब हमें डायरेक्ट सियासत करनी पड़ेगी, डायरेक्ट सियासी पार्टियों के साथ तल्लुकात बहाल करने पड़ेंगे, इन लोगों की मीटिंगों में जाना पड़ेगा, इन्हें बुलाना पड़ेगा, इनकी कम्यून के इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ेगा, इन जमातों की तरफ रुख करना पड़ेगा, तब मसाइल हल होंगे। जिस तरफ हम लगे हुए अपने तल्लुकात बनाने के, किसी ने सदर का टाइटल लगा लिया, किसी ने किसका टाइटल लगा लिया पीछे अपनी वक्त बढ़ाने के लिए।
2: ये बात है कि आप उनसे पूछे जो ये दावा करते हैं कि ये मॉडर्न मार्च को जारी है, मेरा बड़े करीबी दोस्त है, कल उसने जो बयान दिया है फेसबुक के ऊपर, वहां पे खड़े हो गए, वो किसके है? बात असल में ये है,
1: वो तो डेफिनेटली अदनान है, ये बड़े तरीके से पूछते हैं, अदनान लिख के पूछता रहता है, तो सारी चीजें शायद सब बाहर नहीं आ सकती।
2: नहीं, अदनान के पीछे जब तक पब्लिक नहीं होगी, ये मेरी अफायरिंग है, ये मेरा तजर्बा है इस कौम के अंदर, जब तक आपके पीछे लोग नहीं होंगे और फेथफुल। अब ये नहीं इदरान तकरीर कर रहा हो तो मैं पीछे बैठा हूँ कुर्सी पे हंस रहा हूँ और डैनिश देख रहे हैं कि ये अपने का मजाक उड़ा, ऐसे नहीं। एक बैकअप होनी चाहिए और ऐसे मुकर्रर होने चाहिए कि जो जिस पॉइंट पे वो बात करे वो दूसरे ने जो पॉइंट रेज किया है उसकी नफी ना करें, बल्कि उसको अगर वो तकवीयत नहीं दे सकते, अगर उसको समझ नहीं सकते, तो फिर अपने जो छोटे से पॉइंट्स हैं वो पेश करके तो स्टेज से उतर जाए। ये जब हम एक दूसरे को पुशअप करते हैं, भाई इसको कोई नहीं पता, 10 बंदे इसके साथ नहीं है, और ये जी ऐसे कम्युनिटी का लीडर बना फिरता है, इससे मसले जो है डैनिश के हंसते हैं, वो कहते हैं कि इससे कमजोर तरीन आदमी हमें कहीं नहीं मिलेगा। तो हमें ये चाहिए कि एक थिंक टैंक जो है अगर हम लोकली बनाना शुरू करते हैं और उसको आस्ता आस्ता वसी करते हैं, और यहाँ पे जब ये जैसे मैंगो फेस्टिवल चंद मैंगो से शुरू हुआ था, अब बहुत बड़ा माशाल्लाह लग रहा है जगह, अगर इसी तरीके से हम औरतों मर्दों को बुलाकर औरतों को उनको वो हकूक दें जो इस्लाम ने हकूक दिए है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप यकीन कीजिए कि यही टेरिस्ट लोग है। देखिये कोई डैनिश रेसिस्ट नहीं है, हमने रेसिस्ट, हम खुद रेसिस्ट है और हमने रेसिस्ट पैदा किए हैं। हमें किसी भी डैनिश के साथ बात आराम से तमीज से बात करें, वो हमारी बात सुनता है,
1: बात सुनेगा आपकी बात। लेकिन अगर दुरुस्त है, अदनान आखिर में आप क्या कहेंगे?
3: मैं यही कहूंगा कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना चाहिए और हमें इंशाल्लाह ताला ये इस पे काम करना चाहिए और हम एक दूसरे की मदद करें। और मेरी तरह से यूर को सलाम, क्योंकि मैंने अभी निकलने गई, तो फिर इंशाल्लाह ताला सबसे बात होगी और फिर इंशाल्लाह ताला होगी, फिर बस के हम एक यूनाइट हो जाएं तो हमें फायदा होगा। फिर
1: बिल्कुल भैया फरमाइश, शाह साहब प्रोग्राम को क्लोज करें।
2: जी बिल्कुल, मैं इदनान से भी करता हूँ और आपको भी मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो है एक थिंक टैंक बनना चाहिए जिसके अंदर हम डांसों को भी लेके आए और ऐसे लोगों को लेके आए जिनका रिलीजन के साथ और जो कमर्शियल और दूसरे बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो सारे इकट्ठे हों, और इनके साथ हमें चलना है اور یہ بتانا ہے کہ ہم نے اگر زندہ رہنا ہے یہاں پہ جیسے آپ زندہ رہتے ہیں ہمیں بھی زندہ رہنے کا حق حاصل ہے. تو ڈنمارک کا آئین جو ہے وہ ہر آدمی کو اجازت دیتا ہے کہ فری ول اور ریلیجیس فری ول جو ہے یہ اس کا حق ہے. لیکن اگر ہم نے اس کے اوپر بات نہ کی اور یہاں پہ ڈنڈے سوٹے کی بات کی تو یہ کبھی بھی ہم سیدھا نہیں کر سکیں گے. ڈائیلاگ جو ہے اور یہ ڈائیلاگ وہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے کہ جن کے اوپر کچھ بنیاد ہو اور جو مضبوط بنیادوں کے ساتھ بنے ہو تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دیر نہیں ہوگی, اندھیر نہیں ہے یہاں پہ, اور ہم پرانا قانون جو ہے وہ پرانا آئین جو ہے ڈنمارک کا وہ بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے.
4: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सामिन नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो दारा आपके आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम जिस तरह हमने इंट्रो में कहा था, आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें हम उस्ताद कहते होते हैं, गो के बहुत छोटे हैं हमारी उम्र से, लेकिन वो चूंकि स्कूल टीचर हैं तो इसलिए उनको उस्ताद कहा जाता है। इत्तेदाल पसंद पार्टी के वो अच्छे खासे सरगर्म रुकन हैं, हुज़्ब सुरसा के मेंबर भी हैं, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ा और आगे की भी तैयारियां, आइंदा आने वाले जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे उसकी भी तैयारियां अभी से उन्होंने शुरू कर दी। उनको एडवांटेज है चूंकि वो लोगों से मिलते रहते हैं और नौजवानों से उनका जो अट्रैक्शन रहता है, बातचीत भी उनकी चलती रहती है। तो ज़ीशान, एक बार फिर आपको अदर आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, बहुत थैंक यू आपका इंट्रोडक्शन का भी। आजकल उस्तादी भी अल्लाह का शुक्र है अब गई हुई है, जरा छुट्टियों पे नई क्लासों की तैयारी हो रही है।
1: चल तो फिर उस्ताद ही होता है, छोटा हो बड़ा हो, टीचर टीचर उस्ताद ही कहलाया जाता है उनको।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजा साहब ने, ये वाकई ये इसमें कोई शक, इस दफा वैसे भी मेरी क्लास थी, ग्रेजुएट भी हुई उसका भी, मतलब हमेशा ही जब कोई नई क्लास अपनी ग्रेजुएट होती है हर साल वो बड़ा अफेक्ट करती है। तो मैं अभी काफी अपने बच्चे दोबारा आगे भेजे, अल्लाह उनको कामयाब करे,
1: आमीन। ज़ीशान, हमने देखा कि हर वक्त गाड़ियों की आवाज़ें आती रहती हैं, चूंकि मैं ऊपर रहता हूँ, काफ़ी ऊंचा रहता हूँ तो देखता रहता हूँ, तो गाड़ियाँ हर वक्त आती जाती रहती हैं, हॉर्न बजते रहते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये एक ट्रेडिशन बना हुआ, 3-4 दिन या 5 दिन चलता रहेगा छुट्टियों के दौरान, तो इसकी कहानी क्या है असल?
2: इसकी कहानी असल में पहले भी वही होता था, पुराने दिनों में भी जो बन जाते थे फाउल या स्टूडेंट होते थे, मतलब शहर में घूमना, उनको जिस तरह सराहना, और वही ट्रेडिशन अभी तक चल रहा है, टोपी मिलती है, वो अपने शहरों में घूमते हैं और मतलब पब्लिक देखती है, घर घर विजिट करना, ये भी बड़ा अच्छा होता है, एक दूसरे के घरों को जरा विजिट करते हैं। तो वैसे तो मुझे बड़ी फेवरेट ट्रेडिशन लगती है, मैं तो हर अपने स्टूडेंट को भी हर बंदे को बोलता हूँ, मैं कह यार एक दिन जिंदगी का ना अगर दोबारा जीने हो तो ये स्तुतिन तक ख्योसल वाला दिन क्या दिन था। हर कोई आपको चेयर कर रहा होता है, मतलब आपने एक जिस तरह माइलस्टोन अचीव किया होता है, ये हम अगर थोड़ा भूल जाते हैं कि ये फाइनल माइलस्टोन नहीं है हमारे। कुछ लोग तो आजकल ऐसे मना रहे हैं कि जैसे बस अब बिल्कुल ही फारग हो गए, ये मतलब बड़ा एक माइलस्टोन होता है, मगर इसमें अब यह है कि इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद बच्चों ने आगे भी पढ़ाई करनी है, क्योंकि खाली गिमनेशियम आपको कुछ और तो नहीं है फायदा देता, आपको एक चाबी है आगे यूनिवर्सिटीज में पढ़ने की। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे हमारे सब बच्चे आगे जाके आगे भी कोर्स करें, जो उनसे मर्जी करें, तो फाइनल एजुकेशन करें अपने। तो ये
1: लेकिन बड़ा मजा आता है, मैंने देखा है कि टूरिस्ट आए होते हैं तो बड़े शौक से जो है वो तस्वीर बना रहे होते हैं, तो आगे से जो स्टूडेंट होते हैं वो भी बड़े आगे से बड़े बड़े फनी फिक्रे कसते हैं।
2: ऐसे ही है जी, और फिर पता है आपको हर चीज करते करते जिधर भी करो थोड़ी सी ओवर एग्जेजरेट हो जाती है। अब अगर आप थोड़ा सा अगर देखें डेनिश सोसाइटी के हवाले से, तो ये पीना इनका ज्यादा हो जाता है, उस पर भी मतलब बड़ा फोकस रखा गया हुआ है कि थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि गाड़ियों में चल रहे होते हैं और इतना एल्कोहल जोन सा कुछ
1: लाजमन
2: कुछ
1: पीना जो है इसे बैन होना चाहिए, आपकी क्या राय है?
2: बैन करना जी मुश्किल है इस मुल्क में, मगर कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो तो हम हमेशा से बात करते हैं, मतलब दैट्स अ बिग इशू जो हमेशा चलता रहता है कि अल्कोहलिज्म मतलब जितने घरों में और जितनी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उतनी और शायद कोई स्टॉफा करते हो, मगर क्या करें, इनके कल्चर का इतना बड़ा हिस्सा है कि

0: करने में वोट डाल रहे हैं सब। ये
1: बाद
0: कि
1: में
0: कंट्रोल
1: बच्चों को
0: कर सकते
1: आखिर
0: हैं
1: में
0: खत्म
1: शाम
0: नहीं कर
1: तक बच्चों
0: सकेंगे
1: को होश ही नहीं रहता।
0: बिल्कुल, मगर ये मैं देख रहा था इस दफा मैंने कुछ आम वाली भी देखी है कि काफी बेहतर भी आए हुए हैं, कि कुछ चीजें बच्चे कंट्रोल करना सीख ही गए हैं, कि उन्हें भी पता है कि इतना भी खराब ना कर दो कि दिन याद ही ना रहे आपको, इतना आपका अच्छा दिन है कि उसमें आपको कुछ याद ही ना रहे। तो थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ना, अवेयर होते जा रहे हैं बच्चे इसमें। मगर ये बहरहाल आप दूसरी तरफ से ये भी देख सकते हैं कि हमारे लोग अब हम लोग एक दफा फिर बनने लगे हैं सुर्खियां
1: वहाँ मैं उस तरफ आता हूँ, ये
0: न्यूज
1: सुर्खियाँ
0: की।
1: हम लोग बनने लगे हैं। अब देखें कि इलेक्शन तो हो गए, कम्युनिस्ट के भी हो गए, पार्लियामेंट के भी हो गए, सब कुछ मिल गया, हुकूमत भी बन गई, जो है वो कमेटियाँ भी मिल गई, अब जो है वो सियासत छुट्टियों पे गई है, लेकिन उसके बावजूद सियासत जो है वो सरगर्म है। क्या वजह है?
0: वो बस कुएं की सीढ़ी से बोलते हैं, और उसमें तो हमेशा ही हम लोग ही उसका बनते हैं निशाना। मगर इस दफा तो मैं ये देख रहा हूँ कि सुचिंता वॉन पे भी हम लोगों को मतलब इनको काफी मटेरियल मिल गया है। आपने देखा होगा वो हिजबुत तहरीर का हमारा एक जोन सा है कि कनोची, तो उसने एक वीडियो बनाई है, वो लोग बड़े चला रहे हैं कि उसने जी सबको मना किया हुआ है मुसलमान बच्चों वगैरह को कि जी सुचिंता खड़स पे नहीं जाना, उन्होंने तो एक वो चला हुआ था। नंबर दो, अब ये आपने देखा होगा पटाखे माशाल्लाह छोड़ना शुरू कर दिए हमारे बहुत ज्यादा लोगों ने, और कुछ कुछ जगह कोई हद से ज्यादा ही छुटे हैं, गाड़ियां मतलब गाड़ियां आगे लगी हुई हैं पीछे लगी हुई हैं। अब वो मैं देख रहा हूँ वो भी सुर्खी बनने लगा है कि जी कि ये फ्यूल गई ऐसे छुड़ा रहे हैं जिस तरह मीडो साफ ने, और ये गलत है, और एक दूसरे के पीछे पीछे भी छुड़ा रहे हैं। और हर चीज वही कहते हैं ना ओवर एग्जेजरेट हो ही जाती है।
1: तो भी इसका फायदा जो है वो DF को जरूर होता है।
0: डीएफ को आजकल आपसे कल मेले पे मुलाकात हुई थी, वो थोड़ा सा जिक्र छिड़ा था ना, अब डीएफ अकेली तो नहीं रहेगी। वो पॉलिटिक्स के हवाले से भी अगर बात करें तो आप लोग देखे ना इन्फोस खास उलवेल जोन सा बना, ये जो डेनिस पासपोर्ट वगैरह का फैसला वगैरह करना होता है। अब देख लें नया पार्लियामेंट आया उसमें फिर भी देख लें कि ज्यादा अक्सरियत में जो पार्टियां बैठी हुई हैं जिन्होंने बंदे अपने भेजे हैं वो सारे वो हैं जो सख्ती करना चाह रहे हैं, रेडिकेल का एक, मुड़गाड़ आने का एक, SF के एक दो, इनहोसिस का एक, पांच बंदे ये हैं, बाकी सारे सुशेल तेमुखत्सल बेंसपा तेनमक्स तेमुखाड़ आने TF का वो फिर फॉर्मेट बन गया हुआ है, ये बैठे हुए हैं उधर जान तंग करने के लिए अभी भी। तो
1: नहीं तो पार्टियों में तो जहाँ कमेटियों में अक्सरियत होती है, फैसला तो वही होता है।
0: असल में भाई ये एनशोइनिंग और डिस्पेंसरी वगैरह उधर ही जाते हैं, तो वो मैं दरअसल ये एक चीज है, मैं खुद इसके मेरे लिए भी नया था, मुझे था शायद कि पार्टीज को जगह मिलती है कि कितने अपनी साइज के मुताबिक से, मगर ये कोई मेरे ख्याल से सिलेक्ट करती हैं पार्टियां। इसमें मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा इसका पता करके बताऊंगा कि इसमें कुछ पार्टियों के ज्यादा क्यों है और कुछ के थोड़े क्यों है, क्योंकि मुझे वो देख के थोड़ी सी हैरानगी हुई है कि कुछ पार्टियों के
1: शान
0: एक हैं
1: आपकी
0: कुछ के दो
1: पार्टी
0: दो।
1: है इक्तदार में, आपके फोरमैन हैं, उनको काफ़ी बड़ी अच्छी पोस्ट मिली हुई है, तो वो काफ़ी जो है वो ये जो कैटेगरी 5 वाला वाला मामला है, इसमें भी काफ़ी पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि गैर मुल्की से मुराद हम पाकिस्तानी खुद किस तरह उनसे रबता करते हैं।
0: बिल्कुल ये एक चीज अब एक दो दफा आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस हो चुकी है, और ये इंशाल्लाह अभी छुट्टियां खत्म होती हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं सोसाइटियां सारी इनके साथ मिल बैठने वाली बात है, क्योंकि एक जो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से मैंने कहा था कुछ हमारे मौजूदात हैं जो एज अ डेनिश मुस्लिम उनको उस तरह डील करना है, दूसरा ये वाला जोन सा है डेनिश, ये हमें डेनिश पाकिस्तानी की तरह करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज मैंने पता लगवाइए कि पॉलिटिशियन बड़े बड़े आपसे मीटिंग कर लेंगे, मीटिंग सारे ही कर लेते हैं, अगर मेरे कॉन्टेक्ट हो मैं करवा दूंगा, मॉडल्स में हमारे सोशल डेमोक्रेट के इतने जानने वाले हैं जो बैठे हुए हैं, मतलब अच्छे मीटिंग हो जाएगी मीटिंग कर भी लेंगे, मगर अगर उनसे अगर काम निकलवाना है तो जिस तरह नहीं फिर उनके काम भी आना पड़ता है, तो कोई ना कोई स्ट्रेटेजी हमें बनानी पड़ेगी माशाल्लाह, कोई इस तरह सपोर्ट करना है किसी को, मतलब गिव एंड टेक चलता ही रहता है जी पॉलिटिक्स में भी इधर भी कहीं भी कोई ना कोई गिव एंड टेक है,
1: है,
0: और
1: लेकिन
0: वो
1: जो
0: हमें
1: हमारे इंटीग्रेशन के वजीर हैं वो तो हमारे कल्चर को भी समझते हैं, मिक्स भी रहते हैं दोस्तों, उनकी दोस्ती भी है गैर मुल्कियों के साथ, आते जाते रहते हैं उनकी मुआफल में, उनको पता है हमारे कल्चर का या गैर मुल्कियों के कल्चर का, फिर भी उनके जो
0: एग्जैक्टली
1: बयानात आ रहे हैं वो काफ़ी सख्त आ रहे हैं।
0: बस वही कल बैठ के वही मजाक भी थोड़ा सा हो रहा था, सीरियसनेस तो है, मजाक भी हो रहा था कि मोहम्मद को हम जितने जानते हैं महफिल में बैठे हुए थे कि वो सख्त होने की कोशिश कर रहा है, मगर अगर आप वीडियोस नोट करें उस तरह से सख्त लग नहीं रहा, वो जिसे नहीं कहते धक्के नाल, मगर वो सोशल डेमोक्रेट की इस वक्त पॉलिसी यही है जी। और जितनी देर तक मेटे है और ये सोशल डेमोक्रेट का भी रहेगा तो फुल चीक में कोई नरमी उस तरह आने नहीं लगी। तो मगर ये है कि मौत उसको से ये पाकिस्तानियों के मामले में स्पेशली हमें वाकई में करना चाहिए, मगर एज अ पाकिस्तानी कम्युनिटी करके मीटिंग्स करके उन्हें पता करना चाहिए कि क्या चाहिए यार इनको, ये मसला इस चीज का एग्जैक्टली क्या है, एक एक सही मुद्दा अपना लेके जाए। तो वो मैं भी इंशाल्लाह पता करूंगा, मगर यह है कि हमें अपनी फुल तैयारी से जाना चाहिए, सिर्फ इससे नहीं कि
1: वो
0: हम क्या चाहते हैं
1: आज
0: पता
1: आपसे
0: चले कि वो
1: पहले
0: क्या
1: बात
0: चाहते
1: हो
0: हैं।
1: रही थी मास्टर साहब से, तो उन्होंने जिक्र किया कि मेरी कोई रिलेटिव है, उनके बच्चे माशाल्लाह गालबन 40-45 साल उन्होंने उम्र बताई, उन्होंने कहा सिस्टम तो उनको वीज़ा दे रहा है लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन उनके बच्चे जो हैं काफ़ी पढ़े लिखे पढ़ गए, उनको वीज़ा मिलता रहा, लेकिन अब उन्हें मजबूरन काम करना पड़ रहा है। उन्होंने डेफिनेट उनके मियाँ अच्छी खासी पोस्ट पे है, उन्होंने उनको काम नहीं करवाया कि आप बच्चों को ज़्यादा लुक आफ्टर करें, उनके बच्चे सारे पढ़ गए हैं, लुक आफ्टर माँ ने की है, लेकिन चूंकि कानून
0: बिल्कुल
1: कायदा ऐसा है कि जब तक वो शराइत पूरी नहीं करेंगे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा पक्का।
0: बस ये आ गया ना, वो मेरी एक दफा लास्ट लेकर से भी बात हुई थी, कहता है ये बंद फोरम में तो वो भी मानता था, और ये तो अगर कुछ जितने अच्छे पॉलिटिशियन बंद फोरम में मान जाते हैं कि लॉ जो उन्होंने बनाया है अगर वो 2% को अटैक करने के लिए बुला रहे हैं तो फिर वो फिर भी बाकी 98% उसमें रगड़ा जाता है, कोई भी लॉ एक को बनाने के चक्करों में ये अच्छे बंदे मारे जाते हैं हमेशा।
1: लेकिन फिर ये जमहूरियत तो ना हुई ना, डिक्टेटरशिप हुई।
0: बस यही है जी, इसीलिए तो मैं भी इस चीज के बड़ा खिलाफ हूँ कि जो वन साइज फिट्स ऑल इसके हाथ में मैं कभी भी नहीं रहा हूं। हर चीज का मतलब हर केस का एक अपना अपना मुद्दा पहलू होता है, ये कि एक सिस्टम के तहत ये जो वन साइज फिट्स ऑल जो थ्योरी है ये मुझे कभी पसंद नहीं है, और ये था यही मुड़वा रहा है कि पार्टी का काफी चीजों में ऐसे ही है, वो चाहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी हो, मतलब इतना यकहन तो ना हो चीजें जो सा है, तो इंशाल्लाह
1: लेकिन हम
0: इस
1: फिर
0: चीज
1: आते हैं
0: पे
1: पार्किंग
0: जरूर
1: की
0: गौर
1: तरफ भी
0: कराएंगे।
1: आते हैं, पार्किंग के मसाइल इन दिनों में आप भी देखते रहते हैं, आप भी जाते हैं, कल मेले पे भी आपने पार्किंग का सिस्टम देखा कि गाड़ियां जो इतनी ज़्यादा तादाद में, सब गाड़ियां तकरीबन जो है अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको नज़र आती है, पेट्रोल वाली डीजल वाली तो बहुत कम नज़र आती हैं गाड़ियाँ, ज़्यादातर इलेक्ट्रिक
0: जी।
1: है, लेकिन पार्किंग का फिर भी मसले मसाइल बनते रहते हैं। लेकिन शहर में साइकिल के लिए को इतनी बड़ी जगह बनाई जाती है, साइकिलों की वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं, साइकिलों की वजह से दाएं बाएं मुड़ने में भी रुकावट पैदा होती है, उनके अलहदा बैन भी बनाए हुए हैं, और उसके बावजूद जो है साइकिलों के लिए हर किस्म की जो है इजाज़त है, प्राइवेट कंपनियां भी साइकिलें लॉन्च कर रही हैं, इलेक्ट्रिक साइकिलें लॉन्च कर रही हैं, तो क्या जब गाड़ियों को इजाज़त है फिर साइकिलों को इजाज़त है, तो गाड़ियों का प्रॉब्लम है, पार्किंग का प्रॉब्लम है या साइकिलों का प्रॉब्लम है?
0: और ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही ये पता नहीं कौन बैठ बैठ के बना रहे होते हैं, कभी कभी इधर ब्यूरोक्रेसी का बड़ा कोई सिस्टम है, आपने देखा होगा आजकल जो सड़कों पे काम इन्हें करना शुरू किया हुआ वो लोग पिट रहे हैं कि यार इस प्लानिंग के तहत तुम लोग काम शुरू करते हो, एयरपोर्ट से आने जाने का मतलब जो उनसा इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। और मेरा एक बड़ा अच्छा अब दोस्त ही बोले बन गया है मुड़वा में कोपनहेगन में ही होता है, वो एक दफा पॉलिटिक्स छोड़ गया था ये 1.5 साल पहले, मतलब कि उनको वैल से थोड़ा सा पहले का तैयार नहीं करना, और वो बेसिकली डेनिश ही है, वो खुद ये पीको पीको छिकनिक और उसमें उसकी पढ़ाई है वो ही काम करता है। निशान यार मसला हमारी पॉलिटिक्स का ये भी हो गया कि जो अब मैं एक्सपर्ट हूं ना अपनी फील्ड का, कहता कुछ सुनता ही नहीं, अपनी मारे जा रहे हैं, कहता मेरा कोई नहीं दिल ये करने, मेरा कोई नहीं दिल, मगर फिर ये है कि उसे वापस ले आए क्योंकि बड़ा मेहनती बंदा है और बड़ा काबिल बंदा है। तो ये भी आप देखेंगे कि जो मुड़वार ने की पार्टी है इसमें काफी ऐसे बंदे आए हैं जो फाउली हिल्स अपनी की वजह से आए हैं, मगर अब मैं वो मेरे फर्स्ट का जिस तरह आप देख रहे हैं माशाल्लाह 11 साल फॉर्म में रह चुकी है, 7 साल से अब वो प्राइम मिनिस्टर है मतलब डेनमार्क की, वो 24 साल की उम्र से आई हुई है फॉल्के सिंह, ना उसने आज तक कोई काम किया ना उसकी उस तरह से कोई है, मगर यह कि पॉलिटिक्स में वो शेर नहीं बने हैं, तो ये एक बड़ा मसला हो गया है। मुझे जो सबसे बड़ा लगता है एज अ टीचर भी, और के आजकल पॉलिटिशियन सारे पॉलिटिक्स पढ़ के बन जाते हैं यंग से, मतलब वही उनका शख्सियत से चले और कैरियर कैरियर बन गया ना पॉलिटिक्स, उसमें ये एक्सपीरियंस नाम की चीज खत्म होती जा रही है, जो सबसे बड़ा मेरे एक लड़ाई रही।
1: इसका मतलब है कि ये भी अब सारे जो है पावर हासिल करना चाहते हैं कि इस सिस्टम में जाकर आपको पावर मिलती है,
0: बस ये। और ये समझ आ गया उनको, आप देख लें, मैं अभी पिछले दिनों सर्वे पर देख रहा था, मेरी कोई वो यंग बच्चे थे, उनका कोई प्रोजेक्ट था, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया कि यंगस्टर्स को कैसे इन्वॉल्व करना चाहिए पॉलिटिक्स में, और मैं फिर कुछ सर्वे देखे तो पहली बात तो राजा साहब ये मेरे ख्याल कोई डेनमार्क की टोटल आबादी में से 2-3% तो सिर्फ इन पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा है सिर्फ, और उनमें से बिल्कुल ही 1% नीचे पहुंच जाते हैं जब आप बोलते हैं कि यूथ इनका हिस्सा है। और हमारे फिर अगर आप कर लें जो गैर मुल्की बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो तकरीबन है ही नहीं कहीं, और वो जो दूसरे हैं वो बस बनते बनते चलते जाते हैं, और फिर पावर ऐसे आ जाती है, और इसीलिए तो बेड़ा गर्क हो रहा है मुल्क का काफी काफी जगह के स्कूल पन है, और क्योंकि सारे बैठे हुए हैं मगर इनको पता है कोई नहीं कि काम किया गया है नहीं कभी, अंदर अंदर बैठ के सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं सारे।
1: तो निशान आप चूंकि स्टूडेंट से मिलते रहते हैं, अगर देखा जाए तो फिलहाल जब हम पढ़े लिखों की बात करते हैं आपका नाम आ जाता है, कासम नज़ीर का नाम आ जाता है, काशिफ का नाम आ जाता है, जोहर का नाम आ जाता है, इसी तरह और भी जो अपना अरफान का नाम आ जाता है, जब आप लोग क्योंकि तनवीर तो छैसा छोड़ ही गया, नदीम फारूक का नाम आ जाता है, जब आपस में आप लोग बैठते हैं तो आप लोग किस तरह की बातें करते हैं?
0: मेरा तो अब माशाल्लाह सबसे अच्छी बड़ी गपशप है और ये है कि खुल के बात करते हैं एक दूसरे के साथ कि यार क्या करें क्या ना करें, पॉलिटिक्स को अंदर से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हम सबको ये इस चीज पे तो अग्री है कि बड़ा ही स्लो प्रोसेस है अंदर जाके भी कि बंदा बोले कि अंदर अभी पहुंचा ही और मैं बस चेंजेस लाने लगा हूं, वो बड़ा औखा काम है, बड़ा स्लो बड़ा ब्यूरोक्रेटिकल अपना, मतलब ये हम काफी बात करते हैं कि चेंजेस आती हैं मगर बड़ी स्लो, तो बड़ा सबर वाला काम है वैसे ये
1: सफर वाला काम है। मैं वैसे बात करूं कहीं आप भी तो नहीं वो सारे आपस में बैठ के करते यार अब क्या करें, हमें वोट देने वाले भी अजीब अजीब डिमांड हमसे करते हैं।
0: नहीं ये है कि असल में मैं हम लोग जो इस दफा लड़े हैं उससे पहले तो अभी पता नहीं, मगर स्पेशल जो फॉल्किंग वाला लड़े हमारा अभी तक तो यही है जी कि एक ये स्ट्रेटजी है कि अगली दफा क्या करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं एज अ पाकिस्तानी बैकग्राउंड हम सारे इधर रहते हैं, हमारी अक्सरियत सारी इधर है, कैंडिडेट सारे एक ही ओमान में खड़े हो जाते हैं, दो ओमान में खड़े हो जाते हैं, हमें जाहिर अपनी प्रोफाइलिंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी, आगे तक भी पहुंचना पड़ेगा कोशिश करके। अब ये जो फीन या कोई यूलर्ड के इलाके इनमें भी देखना पड़ेगा कि किस तरह कोई एस्टेब्लिश कर सकते हैं, या शेलन, अब आप ऐसे ही देख लें कि शेलन में एक शेलन क्राइस भी होता है, उसमें भी हमारा कोई बंदा नहीं खड़ा होता, हम लोग कोपनहेगन और कोपनहेगन के ओमान में बस रह जाते हैं। तो ये एक गुफ्तगु सब भाइयों से चलती रहती है कि हम कुछ स्ट्रेटेजिकली इधर कर सकते हैं जिससे फायदा हो कि सारे मतलब इधर ओमान में आके खड़े हो जाए आपस में एक दूसरे के साथ कर कुर के लो जी ठप्पो ते कार चलो, उस चीज से बचने के लिए ये एक स्ट्रेटजी सोचने वाली है। तो उसके बाद जाहिर है वो तो आपको भी पता है, उस पर अब क्या रोना और कि ये कि कौम निकली नहीं फिर भी, और आगे निकलेगी कि नहीं निकलेगी, इस दफा भी नहीं निकले जब
1: इस दफा एक चीज बड़ी फेलियर है कि शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि 40,000 हम लोग हैं, हम अपना एक पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बना सके
0: जी, और बस ये है कि मगर इसमें अब शर्मिंदगी है, वही मैं कह रहा हूँ इसमें बातचीत खत्म कर देनी चाहिए हमें, अब इसमें अब बैठ के कोई ढूंढना चाहिए स्ट्रेटेजी ढूंढनी चाहिए कि कैसे होगा, और मिल बैठ के होगा मशावरत है, एक पॉलिटिक्स में मैं मानता हूँ कंपटीशन भी होता है यार, कुछ देर तक साथ भी चलना पड़ता है, जिस तरह आप देख लें हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा होता है, अब हम जब किसी भी पार्टी से लड़ते हैं एज अ टीम लड़ रहे होते हैं मगर लड़ तो एक सीट के लिए रहे होते हैं, इन दी एंड पर्सनल जो उनसे वोट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा, किसी को 800 वोट मिले किसी को 802 मिल गया वो सीट ले गया, मगर उससे पहले आपको एज अ टीम भी रेडी होना पड़ता है और लड़ना पड़ता है, और हमें भी ये याद रखना पड़ेगा कि इन द एंड यस दौड़ अपनी अपनी मगर जब तक मिल के स्टार्ट नहीं करेंगे फिर वो बिल्कुल ही रह जाएंगे सारे, तो इंशाल्लाह मिलकर स्टार्ट लेंगे इस दफा, और फिर आगे जो हिम्मत ज्यादा मारेगा इंशाल्लाह जो मतलब ज्यादा बंदों को अट्रैक्ट कर सकेगा वो इंशाल्लाह अंदर जाकर बैठे हमारी नुमाइंदगी करें।
1: ज़ीशान आखिर में ये जो हमें आजकल मैंगो का फेस्टिवल का जो जोश चढ़ा हुआ है, पांच पांच छः छः प्रोग्राम कराने के लिए हम मेहनतें करते हैं, जाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, तो क्या ये भी कोई एक ये क्या ट्रेडिशन बन जाएगा या ये इसमें भी कोई चीज़ इन्वॉल्व है?
0: पता नहीं जी, मगर इस साल तो मुझे तो बड़ी खुशी है, मैं तो वही देख रहा था कल, अब बॉन्पी में हुआ है, अगले हफ्ते एल्बस लोन में हो रहा है, फिर एक और होएगा और फिर 19 तारीख को इधर हमारे बैला रुख तक ले आया माशाल्लाह, इधर भी आ जाएंगे। तो ये हमारी देखे ना, कल भी मुलाकात हुई थी उधर, तो निकल रहे हैं, बच्चों को भी जरा शऊर आए दोबारा कि हमारे यार इधर प्रोग्राम होते हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। मगर कल मैं वही आया था जब मेले से, मैं कह यार इधर भी हमें चाहिए कि लोग आए, यार पॉलिटिकल करना नहीं है मगर किसी तरह कोई, क्योंकि अब हम लोग काफी लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिनसे होती है, यंगस्टर से भी हुई थोड़ी बहुत जिन्होंने जाना, ओ आप ज़ीशान है, हाँ ज़ीशान है, इधर आके हमारे लिए भी बड़ा अच्छा होता है आके गुफ्तगू करना, बात करना। इस साल असल में फॉल्कन सेंस वेल हो चुका है तो इसलिए लोगों का थोड़ा थोड़ा अभी शऊर है, अगले साल जब होगा शायद नहीं होगा, मगर इसको किस तरह बनाई रखना है हमने, तो वो मैं अब सोच रहा था कल गा रहा आगे कि किस तरह इनको हम थोड़ा सा ऐसे सोसाइटी को भी स्ट्रांग करने में, कम्युनिटी को स्ट्रांग करने में भी इन मेलों को यूज कर सकते हैं, तो माशाल्लाह तीन तीन चार चार तो हो रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं हमारी कोई तंजीम पॉलिटिकल होना नहीं चाहती, हमारी कोई तंजीम मतलब उस तरह ऑर्गेनाइज होना नहीं चाहती, मगर ये है कि बेहतरी चाहते हैं हमारे लिए, तो कुछ स्कीम लगा ही रहा था कि किस तरह बातचीत हो सकती है, इतने बंदे आते हैं, स्टेज भी लगा होता है कि कुछ हम उसमें है ना,
1: नहीं उसमें जो है पॉलिटिशियन को चाहिए कि वो तकारीर भी करें, लोग उनसे सवालात भी करें, अच्छे माहौल में सारी बात होनी चाहिए ना, खाली हम लोग खाने के मूड में चले जाते हैं, मेरी जरूरत है मैंने खाना खाना है, बच्चों की जरूरत है उन्होंने आइसक्रीम खानी है या फ्रांचीज लेनी
0: जी,
1: है
0: जी,
1: उसके अलावा भी इंटरेस्ट होना चाहिए ना।
0: बिल्कुल, क्योंकि मैं बिल्कुल इसको ये सोच रहा था जिस तरह चले कौन लॉस डे तो होता है वो तो बड़ा होता है, मगर जिधर डेनमार्क भी आप देखें फर्स्ट में ही आता है, उधर भी ऐसे मेले ही कर लेना, एक तरह के मेले लगते हैं, स्पीचेस होती हैं थोड़ी बहुत बीच में, थोड़ा शुगर मेला होता है, इसी तरह आप संथेंस ये 23 तारीख को जो इनका जलाने का है उसमें भी पोल छेला होती हैं, आते हैं पोल छेला करने जाते हैं, माशाल्लाह मैं भाई नदीम का पढ़ रहा था कि भाई नदीम कहीं गए हुए थे उधर टॉस्ट्रोप अपने पोल छेल करने के लिए, तो मतलब फेस्टिवल्स का हिस्सा भी हो सकता है ये सोसाइटी में इन्वॉल्व करना। माशाल्लाह कल एक बच्ची मिली मुझे अपनी कि नई इशू शुरू कर रही है, कहती भाई मुझे बड़ा शौक है पॉलिटिक्स का, मैं कहा जी आप लोगों की जरूरत भी है, मैंने कहा आप क्या सैम्पल साइंस पढ़ोगी, कहती है बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं कहा ठीक है, मैं किसी मदद की जरूरत हुई कभी, मैं कहा मुझे फाइंड कर लेना, तो मुझे निकलने का बड़ा फायदा होता है। और जबकि मैं वही मजाक कर रहा था, मैं कल इस नीयत से मेले पे गया था, मैंने गाड़ी चेंज करनी थी और 3-4 घंटे वैसे ही लग गए उधर, शुगर शुगर लोगों के साथ लगाते हैं, चाय पीते कुर्सी खाते, तो बड़े अच्छे वैसे हो रहे हैं ये फेस्टिवल, तो इनमें ये है कि किसी तरह हम अपनी आइडेंटिटी स्ट्रांग करें, अपना कोई मुद्दा दर स्ट्रांग करें, तो फिर इंशाल्लाह, क्योंकि बड़ी मेहनत देखे ना जिन्होंने कल किया है, मैं उनको भी देख रहा था, बड़ी मेहनत लगती है ऐसे फेस्टिवल करने में, छोटा करें बड़ा करें जिधर भी करें, बड़े बंदों की मैन पावर लगती है, तो मैं वही कह रहा हूँ हमारे इतने लोग हैं जो एक हम कम्युनिटी के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह शुगर मेला भी और साथ सीरियसनेस दोनों साथ साथ लेके चलेंगे,
1: सीरियसनेस जो है वो लाजमी होनी चाहिए, बहरहाल जिन जो मेहनत करते हैं डेफिनेट हो मेहनत करते हैं तो कुछ कमाते भी हैं, अगर मेहनत नहीं करेंगे कमाएंगे भी कुछ नहीं।
0: बिल्कुल, और ये है कि बस इंशाल्लाह थोड़ा मिलकर अगर स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश है अभी इन मेलों में खुद भी
1: आऊंगा, पार्टियों को आना चाहिए जी, सियासी पार्टियों को आना चाहिए, उन्हें अपने स्टॉल लगाने चाहिए और कुछ फंक्शन में जो पार्टिसिपेट भी करना चाहिए
0: जी जी, क्योंकि ये तो देखिए अभी बेला ओप में खामा माकर होगी, वो भी इस साल हम मुड़गार ने बैठे हुए थे, अच्छा जी इस साल हमने स्टॉल लगाना है कि नहीं लगाना, बेला ओप में सोशल डेमोक्रेट हर साल लगाता है, तो ये है कि मतलब और हम सारे अगर एक जगह भी आके खड़े हो जाए उधर, बस लोगों का एक बना रहेगा ना कि यार अच्छा यार सारे आए हुए हैं इकट्ठे मिलके खड़े हैं, चलो गुफ्तगू होगी इंटरेस्ट होगा, तो ये एक आइडिया मेरे जहन में कल आया था, अब आपके रेडियो के जरिए थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इंशाल्लाह जो हमारे ऑर्गेनाइज करने वाले उनसे भी इंशाल्लाह कॉन्टेक्ट करेंगे।
1: और लेकिन मसला ये है कि अब सब डेनिस सियासत करना चाहते हैं लेकिन वो जो हमारे अपने अपने जो सियासी जो हमारी पार्टियां बनी होती हैं, हमारे रूट्स बने होते हैं जिसे हम जमहूरियत का नाम देते हैं, तो ज़्यादा फोकस हम उस तरफ करते हैं, ज़्यादा इधर नहीं फोकस करते कि हम वोट क्यों नहीं देते, पार्टियों में मेंबर डैनिश पार्टियों के मेंबर क्यों नहीं बनते, या इन पार्टियों में जाते क्यों नहीं है, इस तरफ हम तवज्जो नहीं देते। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं जी हार गए, हम इतने ज़्यादा बंदे थे, हम पार्टिसिपेट उस तरह का करते नहीं हैं। तो गिले बनते ही बनते हैं, कभी मीडिया से बनते हैं, कभी सियासतदानों से बनते हैं, कभी कम्यून की तरफ हम चल पड़ते हैं, कभी पार्लियामेंट की तरफ चल पड़ते हैं, और गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। हम अपने आप को नहीं देखते कम कर क्या रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने, करना खुद से शुरू चाहिए, गिला भी आप करें, मगर यह है कि घर बैठ के नहीं, बाहर निकल के काम करके साथ साथ गिला करें। मेरी असल में हमेशा ये सोच रही है कि गिला अगर करना है यार तो मतलब इस पे नहीं करना कि यार सुनी सुनाई बातों पे घर बैठे बैठे गिले करने, बाहर निकल के देखो, जहां फिर नहीं आपको ठीक लगता कुछ, फिर गिला आप कैसे भी हो यार, ये मैंने एक्सपीरियंस किया।
1: मगर मैं कल बात कर रहा था, मैंने कहा ये जो ट्रैफिक मिनिस्टर है उन्हें खुद गाड़ी चलानी चाहिए, हर रोज जो है ना हफ्ते में 7 दिन एक बार चला के देखें लगातार, ताकि इनको पता चले ट्रैफिक के मसाइल क्या हैं।
0: बिल्कुल, मेरा तो दिल करता है हफ्ते में एक एक दिन कम से कम इनका जो इंफ्रा मिनिस्टर है वो किसी फ्लाई इन जाए, एक एक दिन करके स्कूल वाला जरा स्कूल आके देखे, ये दुनिया बड़ी अंदर बैठ के चलाना बड़ा मुश्किल है, मगर ऑन फ्लोर होके बड़ा डिफरेंट होता है काम करना। तो इसीलिए देखे ना, मैं आज तक बड़ा बड़ा काम था, सारे कहते हैं आगे आगे क्यों नहीं, आगे क्यों नहीं जा रहे थे, मैं यार मुझे स्कूल में यार बड़ा ही मजा आता है, इन बच्चों के साथ इनको इधर से आगे भेजना जो उनसे है वो बड़ा पसंद है मुझे। अब एक नई बात निकली, वो जो आपको भी पता होगा, गवर्नमेंट अब निकाल रही है लिस्ट निकाल रही है जी, हुनर तौलिस्ट स्कूल, उनमें एक बेलारूस का स्कूल भी है, और हमें शक है कि उनमें से वो स्कूल हमारा भी हो सकता है। तो मैं कह यार अब ये देख लो, इस स्कूल में मेरा रहना और ज्यादा जरूरी हो गया, जब ये स्कूल इस लिस्ट पे आ गया फिर तो मेरा रहना और भी ज्यादा जरूरी हो गया, मैं इधर से नहीं जा सकता क्योंकि इस मतलब ऐसी ऑप्के हमें उठानी चाहिए मिलकर, यार मेरा लोकल स्कूल है वो इस लिस्ट पे है, उसको इससे निकालना
1: जाना चाहिए। जो स्कूल है वो मिस्ता होता है या होती है, उन्हें भी जाने क्लासों में बैठना चाहिए, आगे पीछे देखना चाहिए, ये खाली बैठ के मीटिंग कर ली, ग्रुप मीटिंग होगी उसमें अक्सरियत ने वोट दे दी जो बिल पास कर लिया।
0: जी जी, और बड़ा बड़ा होता है जी इधर कमून के लेवल पे, तो अब मेरा थोड़ा कॉन्टेक्ट भी है, डलता है बार बार से काफी करता रहता हूँ, मतलब ये कुछ इसका कार है।
1: बहरहाल आप मीठी मीठी जबान में बड़ी बातें कह जाते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, छुट्टी वाले दिन आपने टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया।
0: आपका शुक्रिया राजा साहब, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है सबसे,
1: इंशाल्लाह। समय नाजीन, ये थे जीशान जिनकी आप बात सुन रहे थे, वो बड़ी खुल के बात करते हैं, अच्छे मूड में बात करते हैं और दोस्ती की शक्ल में बात करते हैं, वो चाहते हैं तब्दीलियाँ हों, वो चाहते हैं कि हर चीज़ में तब्दीली हो, लेकिन उसका तरीक़ाकार भी होता है। तो हमें चाहिए कि हम जो है ना वो ज़्यादा डैनिश पार्टियों में जाएं, कम्यून में जाएं, पार्लियामेंट की तरफ तवज्जो दें, कम्यून की तरफ तवज्जो दें, और बाकी जो सियासत है वो बेशक करते रहें, लेकिन जो आपकी सियासत है जहाँ आपके बच्चों का मुस्तकबिल है उस तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। समझ नाज़रीन, हमारे साथ साथ रहिएगा।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ساز دل جب صدا نہیں دیتا کوئی نغمہ مزا نہیں دیتا.

लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पर दी गई है, जो थके थके से तो हौसले।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।